0: डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ गई।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।
8: तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति आओ प्यार करें इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में राजेंद्र कृष्ण के बोल उषा खन्ना का संगीत।

आओ प्यार करें इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हमेरा ही

0: सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
3: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
5: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे

0: जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
1: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ'डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी। अमर उजाला की सुर्खी है,

0: अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत। एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ, तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
0: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से

0: निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ेराम हेडगेवार थे।
1: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
0: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग

0: की वॉइस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

0: पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आपकी मंगल कामनाओं के साथ शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को नई सुबह की नई किरणों के साथ आपका स्वागत करते हुए। उठिए, मुस्कुराइए और आज के दिन की शुरुआत कीजिए पूरे जोश, पूरे जुनून और भरपूर ऊर्जा के साथ। तो चलिए कुछ कदम वॉक के, कुछ पल योग के, थोड़ी सी एक्सरसाइज और ढेर सारी सकारात्मक सोच के नाम करते हैं और सुनवाते हैं आपको पहला गीत, जिसकी धुन आपके कदमों पे, कदमों को थिरकने पर और दिल को जोश से भर देने पर मजबूर कर देगी।

कार्यक्रम चित्रलोक की शुरुआत हमने इस गीत के साथ की जिसे हमने लिया था फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। सुनिधि चौहान और साथी के स्वरों में ये गीत था। जयदीप साहनी ने इस गीत को लिखा था, सलीम सुलेमान का संगीत था। आजा नचले इस फिल्म का गीत। सलीम सुलेमान का ही संगीत है। जयदीप साहनी ने इस गीत के बोल लिखे हैं।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर और मीट ब्रदर्स की आवाजों में। कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स का ही संगीत है, फिल्म का नाम है बागी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है साहित्यकार प्रेमचंद का जन्मदिन। साहित्य के उस महान साहित्यकार का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी कलम से आम आदमी के सुख दुख को अमर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की, जिनका जन्म 31 जुलाई को हुआ था। धनपत राय के नाम से जन्मे प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन और निर्मला जैसे कालजयी उपन्यास और ईदगाह जैसी मर्मस्पर्शी कहानियां दी। यथार्थवाद और समाज सुधार को अपनी रचनाओं का आधार बनाने वाले इस महान कथा शिल्पी को उनकी जयंती पर आज हमारा शत शत नमन। लापता लेडीज फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, राम संपत की बनाई धुन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सुं आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले,
2: ओले, ओले। मैंने प्यार क्यों किया इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और कमाल खान की आवाजों में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।
8: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी हैं। साथ ही जन्मदिन है अभिनेत्री मुमताज का, उन्हें भी हम विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बधाइयां देते हैं। और रात को 9:30 पर आप आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेत्री मुमताज पर। आलेख व स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामली। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, कार्यक्रम चित्रलोक की अगली प्रस्तुति। चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

रॉक स्टार फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान और सुजैन डी मैलो की आवाजों में अगला गीत। इरशाद कामिल ने इस गीत की रचना की है, तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम चित्रलोक। कुछ लव जैसा इस फिल्म का गीत, प्रीतम ने इस गीत का संगीत बनाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और सुनिधि चौहान, अनुपम आमोद के स्वरों में ये गीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले से। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत की रचना की है, प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आज के फनकार।

0: आज मोहम्मद रफी की याद का दिन है, उनकी स्मृति में विशेष फीचर।
1: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
0: तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। गायकी की दुनिया का एक सितारा, जिसकी शीरी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है, मोहम्मद रफी नफरतों और जुल्मतों से भरी इस दुनिया में प्यार का राज।

0: फरिश्ता, एक बेहतरीन शख्स और एक महान कलाकार। समझ नहीं आता मोहम्मद रफी पर बातें कहां से शुरू की जाएं और कहां खत्म की जाए।
1: कि तुझे नगमों की जान अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते।
0: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार नौशाद।
1: सुनी सबने मोहब्बत की जबा आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तान आवाज में तेरी।

0: 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उन दिनों में उनके गांव में एक फकीर होता था जिसकी आवाज ने रफी को गाने की प्रेरणा दी। बाद में मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला आया। यहां उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से संगीत की तालीम ली थी।
1: लाहौर में कुंदन लाल सहगल का एक कंसर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई और आयोजन रुक गया। सहगल ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो नहीं गाएंगे। 13 बरस के मोहम्मद रफी इस आयोजन में अपने रिश्तेदार के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रफी गाना गाकर जनता को शांत कर सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफी ने पहली बार मंच पर गाया। फिल्मों में पहली बार गाने का मौका संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया सन 1942 में। फिल्म थी कुल बलोच।
2: तेरी याद ने आना सताया।
1: सन 1946 मोहम्मद रफी ने मुंबई आने का फैसला किया। यहां संगीतकार नौशाद ने उन्हें सबसे पहले फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। सन 1946 में फिल्म शाहजहां में कुंदन लाल सहगल की आवाज के पीछे मोहम्मद रफी ने कोरस में ये गाना गाया।

0: शुरुआती संघर्ष के बाद मोहम्मद रफी को पहला बड़ा मौका संगीतकार नौशाद ने दिया। फिल्म थी अनमोल घड़ी।
1: तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक।
0: इसके बाद 1948 में फिल्म मेला के इस गाने से मोहम्मद रफी को काफी शोहरत मिली।

0: सन 1949 में आया दुलारी फिल्म का ये गाना।
1: सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
0: मोहम्मद रफी की कामयाबी का कारवां सन 1951 से शुरू होता है। फिल्म बैजू बावरा।

0: इसके बाद मोहम्मद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार नौशाद ने उनकी याद में विविध भारती से ये बात कही थी।
1: गायकी था हुस्ने फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्ने फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज।

रफी इतने पक्के सुरों वाले गायक थे कि गीत चाहे शास्त्रीय हो या पश्चिमी, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मोहम्मद रफी और नौशाद की जोड़ी ने फिल्म संगीत के इतिहास के कुछ बेमिसाल और कालजयी गीत दिए हैं। सन 1900

0: मोहम्मद रफी ने मस्ती भरे गाने भी खूब गाए। चाइना टाउन,
1: बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा।
0: जंगली,
2: आई आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु, हो गया दिल मेरा सुकु सुकु।
0: प्रिंस,
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना जाए।
4: मतलब मेरी आवाज है, मैं समझता हूँ रफी साहब ना होते तो मैं बड़ा मैं इनकम्प्लीट था। उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो।
0: विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर।
4: उन्होंने मुझे स्टाइल दिया जैसे मैं समझता हूँ कि रफी को स्टाइल ओपी नहीं ने दिया। रफी साहब इज अ वेरी गुड सिंगर और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नैयर ने दिया, जहाँ वो खींचते थे आवाज। एंड रफी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। मैं पेरिस में था और उन्होंने गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे जब मैं वापस आया तो मैं रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, वो शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, वो शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले इन करके गिर जाएगा फिर दो रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता।

मोहम्मद रफी ने जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजलें, नातिया कलाम सबको अपनी आवाज दी। ये है उनका एक गैर फिल्मी गीत।

दशक बदलते रहे, युग बदलते रहे, पर रफी की आवाज का करिश्मा खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज लोगों के दिलों पर साल दर साल राज करती रही। आइए दशक दर दशक रफी की यात्रा पर एक नजर। 50 का दशक।

0: किया।
1: उनको खुश करना हो ना हमको, तो लक्ष्मी जी हम दोनों क्या करते थे,
2: विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के प्यारे लाल
1: घर से चाय लेके आते थे, तो उनकी चाय जो बनती थी वो किसको देते नहीं थे, वो खुद पीते थे। लेकिन वो थर्मास के अंदर आती थी, दो थर्मास। लेकिन वो कैसी चाय बनती थी मैं बताऊं आपको, दो सिर दूध के एक सिर बनाते थे जिसमें बादाम और पिस्ता डालते थे, और उसके बाद में चाय की पत्ती, वो खास उनकी पत्ती थी, और वो चाय लेके आते। वो अगर आप एक मिनट रखेंगे तो मलाई इतनी जम जाती है।

0: तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमको खुश करना है रफी साहब को, तो खुश करने के लिए हम उनको बोलेंगे थोड़ी चाय मिल जाएगी। तो वो कैसा करते थे ना, जैसे हम बोलते ना कि छोटा बच्चा अगर है तो अगर मस्ती कर रहा है कुछ, अरे भाई उसको कुछ चॉकलेट देना, चॉकलेट, तो कैसे बोलने का स्टाइल होता है ना। तो उनका होता है जहीर था उनका साला, अरे जहीर चाय दो ना, चाय इनको, बच्चे लोग है ना, चाय पिलाओ। तो बोलने का एक ढंग होता था, और चाय पीने के बाद फिर हमको बोलना चाहिए वाह वाह मजा आ गई। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर उनको एक शौक था सिटी बजाने का,
1: अच्छा
0: विसल। उनको बोलेंगे भाई गाना है एंड में आपको विसल बजाना है, तो पूरा गाना वेट करते हो गाना खत्म हो और मैं जाके विसल बजाऊं। डा डा डा डा रा दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैं अभी अभी के अभी ये सब चीजें होती ना, ये उनमें बहुत थी। और उसके बाद एंड में वो जो वो था ना उसमें पीस था डा, ये हमने यूज किया था टोटा। तो उसमें आप देखिए डा डा डा दी धक धीन, तो उसमें उन्होंने विसल बजाई है।

0: मेरी उनसे पहली मुलाकात 1947 में दिल्ली में हुई, जब भारत आजाद हुआ।
1: संगीतकार रवि विविध भारती के संग्रहालय से।
0: भारत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा दिल्ली में, जश्न जमहूरियत, आजादी का जश्न मनाया, और उसमें दो सिंगर्स मुकेश साहब और रफी साहब को बॉम्बे से बुलाया गाने के लिए।

प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर मिस्टर राम महेश्वरी, वो एक दिन आए, साहिर साहब बैठे थे यहाँ साथ में, साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं, तो कुछ दो शेर आप लिख दीजिए, साहिर साहब का बोल दो शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए, चूड़े नाजुक होठों को कुछ और नहीं तो जाम है। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात करी तो मैंने चूल्हे ने दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जाम है ये, इस टाइप की टून बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। साहिर साहब इसको अब तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको, हम अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना, ये हम शेर व शायरी के हिसाब से तरन्नुम में दो शेर कह दिए, रिकॉर्ड भी बने का फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को, बड़े बड़े अच्छी धुन है, बड़े अच्छा आने दीजिए। डायरेक्टर को हम बोलते हैं कि गाना रखो उसके शेर की बजाय। राम महेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया, बोले नहीं नहीं वो राजकुमार जी के मुंह पे अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे, अच्छा ऐसा कह रहे फिर दो शेर से ज़्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है, दो शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के और आदमी सब सुन रहे थे हर शेर पर, वाह वाह वाह वाह क्या बात, रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना खत्म हो गया दो शेर के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम महेश्वरी साहब को, क्या महेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना दो शेर। अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बाहर जाकर उन्हें साहिर साहब को फोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में दो ही शेर रह गए।

0: काम है ये।
1: मोहम्मद रफी की खासियत थी अलग अलग अभिनेताओं के हिसाब से गाने में अदायगी को स्वर देना। इसीलिए अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं और उनके मुताबिक रफी की अदायगी बदलती रही। आइए अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज के इस सफर पर एक नजर डालें। दिलीप कुमार।

0: कर दूंगा पर्दा, पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम।
1: कुछ ऐसे गाने आए जिनमें किशोर कुमार पर्दे पर नजर आए, लेकिन प्लेबैक किया मोहम्मद रफी ने। ऐसे ही एक गाने की कहानी संगीतकार ओपी नैयर की जबानी।
2: भाई इसलिए किया कि वो क्लासिकल मूड का गाना था, मन मोरा बावरा, तो वो बड़ा सटपटाया उस समय। तो अपने भाई के पास गए, को भाई प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार साहब, तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे। कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, तुम नैयर साहब से बात करो। हमने बोला ये तो सिर्फ मोहम्मद रफी गाएगा, दूसरा गाएगा नहीं। गाया फिर मोहम्मद रफी साहब ने, उठाया
3: मान।

0: एक फिल्म आई थी गंगा मैया पियरी चढ़ई, वो भोजपुरी की पहली फिल्म थी, उसमें एक गाना था सोनवा का पिंजरा में।
1: संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद के आनंद,
0: वो गाना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। तो इस गाने में खास बात ये है कि रफी साहब हिंदी और उर्दू के अलावा पंजाबी में बोलते थे। ये गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई ठेठ भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने गाना गाया। हर वर्ड का फील, प्रोनाउंसिएशन, जैसे इस गाने में एक भैले शब्द है, सोनवा का पिंजरा बंद, और जैसे बंद है, बंद भैले हाय राम, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एकदम भोजपुरी जानने वाला आदमी है उसने इस गाने को गाया हुआ।

0: बचपन में दिल बहलाने के लिए ही तो गाता था, गुनगुनाता था। उस वक्त तो कभी सोचा भी न था कि मैं फिल्मों में आऊंगा।
1: जाने माने गायक शब्बीर कुमार।
0: मैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज के नाम से अपने शहर बड़ौदा गुजरात में काफी मशहूर हुआ। मुझे स्टेज पर बहुत से प्रोग्राम करने का मौका मिला। उस खुदादाद आवाज का मेरा मतलब है रफी साहब का। मैं शुरू से दीवाना रहा हूँ, शहदाई रहा हूँ। जब भी उनका कोई गीत सुनकर स्कूल या दोस्त यारों की महफिल में गाता गुनगुनाता तो सभी सुनने वाले मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ का बदल कहते। आज भी आवाम मुझ में रफ़ी साहब को पाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रफ़ी साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और मुझ जैसे कई शब्बीर मिलकर भी एक रफ़ी नहीं बना सकते।

0: मोहम्मद रफी की याद में ये था विशेष फीचर, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। शोध, आलेख और संपादन यूनुस खान, स्वर यूनुस खान और ममता सिंह, प्रस्तुति शकील बख्शी।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लर और जिला लगता सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते हैं?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है सोयाबीन की।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं दिखी यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहते कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव थोड़े यहाँ से।
0: हो, बाकी का हाल चाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी,
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया। आज क्या गाना सुनाने
1: जी
0: वाले हैं बताइए।
1: जी मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी हैं, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे, हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइशें आती
1: नहीं
0: हैं।
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम
1: जी
0: एक
1: सर
0: ही
1: जी,
0: है।
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ,
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़।
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़
0: किस
1: जी
0: किस
1: में।
0: तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी, मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हाल चाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर।
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल ट्राई कर
0: अच्छा
1: रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी। आज तो आपके शो सुनते हैं सभी, आप
0: जी
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए, कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत
1: हाँ जी
0: सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश
1: हाँ जी हाँ
0: नसीबों में
1: जी।
0: से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल हैं भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी,
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते। फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर। मैं
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: को डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ। जी
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ, आज धूप भी है। हाँ
0: कश्मीर में
1: जी,
0: बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर
1: हाँ,
0: महीने होता
1: बीच
0: है।
1: बीच में होते हैं। हाँ
0: सोनमर्ग तो
1: जी,
0: बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की
0: जी जी
1: गजला।
0: आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख
1: हाँ
0: जाने
1: जी,
0: के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी
1: बस
0: चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है।
1: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहां घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर,
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूं।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहां से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज? अब
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से, पृथ्वीराज
0: जी बोलिए बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर। गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर। देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?

0: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
1: अच्छा, 9 से 12
0: जी
1: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
0: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
1: अच्छा, आपको
0: जी
1: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
0: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा 10 बांधवगढ़ का एरिया है सर। उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर। और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
1: मोर! अरे वाह
0: जी
1: वाह
0: जी
1: वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
0: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ
1: और आपका काम क्या है भाई
0: सर। हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
1: उस इलाके में?
0: जी।
1: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
0: जी।
1: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
0: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर। हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी के अंदर शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी। तो यहीं से हम पले बढ़े हैं और सबसे अच्छा रेडियो ही है। रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
0: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
1: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई।
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हाँ
0: मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
1: जी,
0: टूरिस्ट वहां आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इससे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये भेजेगा तो वो सही होना चाहिए। सर
0: जी। और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं। उसमें मुख्तलिफ बड़े वाले छोटे वाले पुर मतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुर मतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं। तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। पूरे
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर, बादल
0: बारिश
1: छा
0: बारिश?
1: रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर। बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम सर, से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए, संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है, इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे। जी
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या बात
1: मालूम
0: है,
1: नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02268 0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002462 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे थे ये कव्वाली लैला मजनू फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, अजीज़, नाजा और शंकर, शंभू, अमर कुमार और साथियों की आवाज़ें थीं। शायद ध्यानवी के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में ये दादरा आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोता हमने आपको लैला मजनू फिल्म की कवाली सुनवाई थी, उसमें संगीत था मदन मोहन का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाजों में। गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

जफर गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईदी।

0: नवापारा अभ्यारण्य, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
1: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।

0: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित भातखंडे के रूप में जानती है।
0: भारतीय संगीत एक विशाल की शाखाओं में जनजातीय संगीत

0: की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
1: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
0: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनके रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें। लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो? हैं देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने?

0: दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे।
1: ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
2: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
1: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। ठाट को मेल भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में लगभग किए गए हैं।
0: ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह तीन भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
2: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
1: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
2: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
4: लयात्मक प्रस्तुति।
3: शीर्षक है
4: अभी न होगा मेरा अंत।
3: अभी न होगा मेरा अंत। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
4: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
5: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
4: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
6: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
4: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
7: तुम्हारी याद सताती है।
4: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
9: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
8: सखी सहेली?
9: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
8: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
9: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर।

0: बजे
1: सखी सहेली
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफी आजमी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था, नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म नील कमल के इस गीत के साथ ही श्रोताओ यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है और सुरीला सफर कार्यक्रम को आज हमने मोहम्मद रफी की याद और आवाज से सजाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का। आपको लॉग ऑन कर लेना है www.facebook.com/vbsmumbai और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर आप भेज सकते हैं। मोहम्मद रफी की जब बात आती है श्रोताओ, तो सब कुछ जैसे मोहब्बत के फसानों में ढल ही जाता है। उनके जिंदा दिल गीतों को हमने सुना ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जी है इन गीतों के साथ। चलिए एक बार फिर हम और आप बन जाते हैं इन गीतों के हम सफर और अब पढ़ देते हैं वो इबारत जो आज हमने फेसबुक पर पोस्ट की है। तो ये कुछ मोहम्मद रफी साहब की याद से लबरेज है, उनके गीतों की इसमें याद भरी है। ये इबारत है कि वो आवाज़ जिसका आगाज और अंदाज अनंत है, बनाने वाले ने सात सुरों के तार को जब सजाया होगा। मधुबन से खुशबू, चमन से बहार, नदियों से रवानी, कलियों से नफासत, रात से तन्हाई, सितारों से रोशनी, मोतियों से खनक, डालियों से लचक और चांदनी से नूर की इल्तिजा की होगी। फिर ये रूहानी आवाज बनाकर कहा होगा, चश्मे बदूर दूर रहकर भी आ जा रे की वो पुकार जिसे छू लेने को दिल चाहे। स्वर साज की लय पर मन वादे और प्यार का चर्चा लिए झूमती ये तान, चौदहवीं के चांद को पहलू में लिए आवाज देती है, प्यार से पास बिठाती है और कहती है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे। और आज तराते हैं इसी अजीम फनकार के जिसे दुनिया ने शहंशाह तरन्नुम तो कभी पैगंबर मौसिकी कहा। श्रोताओ, इन गीतों को यानी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों ने हमारी खुशियां बांटी, हमारे गम बांटे। एक करिश्माई आवाज़ जो हमारे सैनिकों को भी जोश से भर देती थी। कव्वालियों में वो सुरों का उतार चढ़ाव, भक्ति रस में डूबी वो तान, के गज़लों में हल्की और नफीस मुर्कियां, तड़प, उदासी, बेरुखी, प्यार और शरारती अंदाज का गीतों में अनोखापन। क्या क्या कहें, अल्फाजों के दायरे में रफ़ी साहब की गायकी को बांधना संभव ही नहीं। इस उन्मुक्त आवाज और उनके गीतों के गुलशन से चंद फूलों को चुनकर हमने कार्यक्रम सुरीला सफर आज सजाया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज मोहम्मद रफ़ी के गीतों को आप कितना याद करते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स शामिल किए जाएँ। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओं इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। मोहम्मद रफ़ी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें ज़रूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओं बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप ताल तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोल और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफ़ी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते

नहीं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हों, मोहम्मद रफी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की वो जादुई आवाज, सांसों का सरगम, जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

सूरज का ये गीत था आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ, हसर जयपुरी कृष्णा थी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर संवेदनशील और रोमांटिक प्राकृतिक राग है ये श्रोताओ, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओ की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च

उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया उसे ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताजा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सोनिए नी हीरिए नी, ये गीत था जो मोहम्मद रफी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफी जी, जिसकी आवाज एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और ये उस जादुई आवाज का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है, तो आज भी मिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूं तो बहुत सफर किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफर दिल के सबसे करीब आया है, तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रज में होली खेलत नंदलाल, रफी साहब ने इस गीत में गजब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा रारा की गूंज और उसके बाद रफी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार।

ससुराल का ये गीत था, हंसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण थाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए यानी सास स्वर से बेहद कोमलता और नज़ाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज़ की मिठास ठहराओ मुर्कियाँ ये सभी इस्तेमाल किए हैं वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफ़ी साहब की जो अलगाकारी है स्वर संवाद करता है। ये गीत अंतरे में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं। यही है कि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अपितु स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफ़ी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफ़ी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में ढकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूल कर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामाफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों के कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो। और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा।
1: जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफ़ी साहब की आवाज़ जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नज़र आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूहानी एहसास लिए जो रफ़ी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गज़ब का है श्रोताओ। जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है। लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफ़ी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफ़ी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज़ हैं जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफ़ी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिला।

घबराहट भी, वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नजर आती है, और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया, फिल्माया गया, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी, नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओ, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींद का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

मोहम्मद रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं? श्रोताओ, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये एक। मोहम्मद रफ़ी ने अपने जादुई आवाज़ का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफ़ी साहब की अगर आवाज़ को आप सुनेंगे तो गजलनुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफ़ी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूँगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफ़ी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी जी की अमर आवाज़ की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे जैसे गाने भी।

उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था। उन्होंने इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक बढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल। किरण पर फिल्माया गया, जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं। रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शम्मी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शम्मी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा, वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ ही किस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने। और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओं, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो, तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

मोहम्मद रफी साहब के अमर नगमे, अमर यादें, उनकी बहुत कुछ है श्रोताओं इनकी गायकी में। संगीतकार नौशाद ने लिखा है, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों की तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फक्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब की पुण्य स्मृति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम था सुरीला सफर। आप सभी का साथ रहा श्रोताओं इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से अब लेते इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ही परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
0: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ीराम हेडगेवार थे।
1: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
0: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार

बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र

सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉइस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी।

पर उससे भी बढ़कर ये प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन दो ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम

0: पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण, आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री

0: वायरल होने की बात की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल

0: रहा है। पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा।

0: पत वसर के डोले मनवा के ही यार में उठत हिलो बुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेश वाकी चल आज देश वाकी ओ।
1: मोहम्मद रफी का गाया गोदान फिल्म का गीत आपने सुना, अनजान की रचना थी, रविशंकर की तर्ज थी।

0: गुसलों में ढला रवि ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है आज के इस कार्यक्रम में। हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली
1: जी। हेलो सहेली
0: नमस्ते।
1: जी। नमस्ते मैम,
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ
0: जी, क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को

0: आती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह, अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है, या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें जीवन
1: जी
0: में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: रहता है।
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी मिस्टर
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी।
0: सत श्री अकाल। बताइए कौन सी सहेली ने
1: हाँ
0: फोन
1: जी,
0: लगाया
1: हाँ
0: है।
1: जी, पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना।

0: जिले से जी
1: अपना नाम बताइए।
0: रितु।
1: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
0: हाँ जी
1: बताइए क्या करती हैं आप?
0: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
1: जी, और
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं?
0: जी शौक तो यही है जी, मैं तो ज्यादातर जी घर में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
1: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
0: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट। नहीं
1: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
0: दीदी वो मुझे नहीं आते, वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
0: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली से, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: जी, तो बताइए कौन
0: हाँ
1: सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन,
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैम। मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है
1: मैम। ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए। रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
1: जी हाँ,
0: जी। अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है। अभी रुकी हुई है लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए जब

0: बारिश ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है, और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं, और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे, और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद भी छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजबीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: जिंदगी में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ,
0: अच्छा
1: खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वाकर में 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो गीत, तो जाएंगे हम मासूस पर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, और मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी। जी बताइए
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ मैं।
0: शॉल बनाती हैं जी,
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं
1: हाँ
0: जी।
1: दीदी,
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ।
0: जी। चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी,
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, प्रेरणा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से,
0: जी
1: मध्य
0: प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी।
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है। ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ, मुलुंड से।
0: जी? बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी हुई
1: हाँ
0: हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी
1: बिल्कुल
0: आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं, और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी।
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट, कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी।

0: जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
1: जी,
0: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
1: जी
0: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख तो बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
1: जी, यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो आपका दिन का बिल्ला है उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
0: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
1: जी
0: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली,
1: जी तो हम
0: बहुत
1: सभी
0: ही
1: को
0: प्यार।
1: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं बेचारे भूखे होते हैं तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं।
0: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना।
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है।
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: हाँ जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ।
0: जी मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं 4002462 यानि 4002462। दूसरा नंबर है 2867028 यानि 28670288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। चलते चलते मैं आपको बता दे, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: कहाँ रख दिया मैंने, कितना सोचा था कि आज की पार्टी में नया वाला सलवार सूट पहनूंगी, पर इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रख दिया। ज्यादा संभाल कर रखो तो भी चीजें नहीं मिलती, पर दुपट्टा कोई छोटी चीज तो है नहीं, अच्छा खासा 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सौम्या ढूंढ ही रही थी कि आलोक, सौम्या के पति ने आवाज दी। कितना टाइम लगाती हो सौम्या, 7 बजे पहुंचना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आ रही हूं आलोक, बस बस 5 मिनट। क्या करूं, कहीं टेलर के पास ही तो नहीं छूट गया, दुपट्टे का पीको करने दिया था। उफ, मैं अब जा रहा हूं, तुम्हारा हर बार का यही हाल है, कभी जो समय से तैयार हो जाओ, पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं। आलोक झुंझला पड़ा। कितनी तो प्लानिंग की थी, रात ही में सोच लिया था क्या पहनना है, अम्मा के लिए खाना बनाकर रख दिया था, दोनों बच्चों को प्रीति के यहां छोड़ आई थी, जब तक हम आए तब तक वे दोनों उनके बच्चों के साथ खेलेंगे खाएंगे, उनके लिए केक बिस्किट वगैरह सभी तो दे आई थी, आलोक की भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था, अब और कितना प्लान करूं। इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
1: ये कौन जाने मैं क्या हूं, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूं जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: किसी की नहीं।
1: बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा, और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा, और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़ सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और 1 हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिस मैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुढ़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठा।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या? छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? ओफो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

0: मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतरा इज तुला। पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था। उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर

साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंदी की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

FM 107 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे युवा श्रोता सुने दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

ढलती हुई शाम केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि भाग दौड़ भरे जीवन में सुकून का एक हसीन पल है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें और यह शांत माहौल हमें सिखाता है कि हर ढलान के बाद एक नई सुबह का उजाला जरूर आता है। यह शाम आपके जीवन में ढेर सारी शांति, नई उम्मीदें और अपनों का प्यार लेकर आए। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युवाणी में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों चलिए कार्यक्रम में अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। उनका नाम लेते ही सबसे पहले रामचरितमानस की याद आती है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में लोगों तक पहुंचाया। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। बचपन में उनका जीवन आसान नहीं था, माता पिता का साथ जल्दी छूट गया, इसीलिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने ज्ञान तथा भक्ति के बल पर महान संत बने। दोस्तों तुलसीदास जी बचपन से ही भगवान राम के भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भक्ति और समाज को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। उस समय संस्कृत भाषा आम लोगों की समझ से दूर थी, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की, ताकि हर व्यक्ति भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके संदेश को आसानी से समझ सके। आज भी उनके द्वारा लिखी गई चौपाइयाँ और दोहे लोगों के घर घर में पढ़े और गाए जाते हैं। दोस्तों तुलसीदास जी ने केवल भक्ति का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि सत्य, प्रेम, दया, सेवा, त्याग और मर्यादा जैसे जीवन मूल्यों का महत्व भी समझाया। उनका मानना था कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं और जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों अगर तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली विशेष रूप से शामिल है। इनमें हनुमान चालीसा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और प्रतिदिन आप और हम श्रद्धा के साथ इसे पढ़ते भी हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास केवल एक कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक और महान संत भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के मन में भक्ति, नैतिकता और मानवता के संस्कार जगाए। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, अपना विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले हुआ करती थीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न माने जाते हैं।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों चलिए कार्यक्रम में बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि आज है इनकी जयंती। दोस्तों मुंशी

0: प्रेमचंद का व्यक्तित्व बेहद सरल, सहृदय और स्वाभिमानी था। वे एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उनके स्वभाव में किसी भी प्रकार का आडंबर या दिखावा बिल्कुल नहीं था। वे हमेशा सादगी पसंद रहे और जीवन भर अभावों के बीच भी अपनी नैतिक मान्यताओं से कभी भी समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवेदनशीलता और गहरी मानवीय सहानुभूति थी। समाज के शोषित, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के प्रति उनके दिल में अटूट दया भाव था। उनका व्यक्तित्व केवल एक लेखक का नहीं बल्कि एक समाज सुधारक का भी था। वे सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक ढोंग और अन्याय के सख्त खिलाफ थे। वे अत्यंत स्वाभिमानी और निर्भीक विचारों वाले व्यक्ति थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर पूर्णतः साहित्य सेवा को अपनाया। उनके व्यक्तित्व की यही सहजता, यही ईमानदारी और यही विचारों की अस्पष्टता उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जो पाठकों को उनके दिल से सीधे जोड़ती है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद का जीवन और संघर्ष, और वार्ताकार है देवेंद्र त्रिपाठी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी देवेंद्र त्रिपाठी। जी हां, आज हम हिंदी साहित्य के उस युग पुरुष की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज की कुरीतियों को झकझोरा, शोषितों को आवाज दी और साहित्य को आम आदमी की भाषा से जोड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का जीवन केवल एक लेखक का जीवन नहीं था बल्कि वह संघर्ष, त्याग और सेवा की एक लंबी गाथा थी। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बचपन का समय अभाव में बीता और कम उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। इन परिस्थितियों में उन्हें बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया। साहित्यिक चेतना और संघर्ष। प्रेमचंद के लिए साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था। उन्होंने देखा कि समाज में गरीबी और शोषण का बोलबाला है। उन्होंने उन लोगों को अपने साहित्य का नायक बनाया जिन्हें अब तक साहित्य में स्थान नहीं मिलता था, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या फिर विधवा नारी। प्रेमचंद ने हर वर्ग की पीड़ा को महसूस किया और उसे कागज पर उतारा। उनका लेखन सोजे वतन से शुरू हुआ, जो देशभक्तिपूर्ण कहानियों का संग्रह था। इसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया और उन्हें नाम बदलकर लिखने की चेतावनी दी। तब उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया और फिर वे नवाब राय के नाम से नहीं बल्कि प्रेमचंद के नाम से ही जाने गए। उनके लेखन में निरंतरता थी और संघर्ष करने की अटूट शक्ति थी। प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य को समाज का दर्पण होना चाहिए। वे मानते थे कि अगर समाज में अन्याय है तो लेखक का धर्म है कि वह उसके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि जैसे कालजयी उपन्यास लिखे। ये केवल किताबें नहीं हैं बल्कि भारतीय समाज के दस्तावेज हैं। गोदान में उन्होंने भारतीय किसान की त्रासदी को दिखाया, जहां एक किसान पूरी उम्र अपनी गाय की लालसा में बिता देता है और अंत में मर जाता है। उनके लेखन बहुत संयमित था और वे भाषा को सरल रखते थे। आप उनके साहित्य को पढ़ें तो लगेगा कि वे सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जीवन के विविध आयाम प्रेमचंद के जीवन के दो पक्ष थे। एक तरफ उनकी नौकरी का दबाव था और दूसरी तरफ उनका साहित्य के प्रति प्रेम। उन्होंने अध्यापन का कार्य किया और साथ ही संपादन भी। उन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। यह कार्य सरल नहीं था क्योंकि उस दौर में आर्थिक तंगी हर साहित्यकार की नियति थी। कई बार उनसे लोग पूछते थे कि क्या लेखन से पेट भरता है या फिर लेखन को अपनी नौकरी छोड़कर केवल लेखन पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमचंद्र ने सदैव यही कहा कि लेखक को धरातल से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने अभाव में रहकर भी कभी अपनी लेखनी से समझौता नहीं किया। वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर विचारों का अंबार है, प्रेमचंद की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। क्या आज का साहित्य समाज के अंतिम व्यक्ति की बात कर रहा है या आज का लेखक केवल अपनी

0: प्रसिद्धि के लिए लिख रहा है, यह प्रश्न आज भी उतना ही बड़ा है जितना प्रेमचंद के समय में था। प्रेमचंद का संघर्ष हमें सिखाता है कि सत्य के साथ खड़े होना कठिन है, लेकिन यह लड़ाई लड़नी ही होगी। उनकी भाषा, उनके चरित्र और उनका दर्शन आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक सफर एक उपन्यासकार और आलोचक की हैसियत से शुरू किया था। उनका पहला उपन्यास 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। वह तब उर्दू में लिखते थे और उनका नाम था नवाब राय। उन्होंने 1907 से कहानियां लिखना भी शुरू कर दिया था। उनकी आरंभिक कहानियां उस वक्त की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन तब प्रकाशित हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। इस संग्रह को अंग्रेज शासक द्वारा खतरे के रूप में देखा गया और लेखक को 500 प्रतियों को आग लगा देने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से फिर प्रेमचंद ने नवाब राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उन्हें यह नाम उर्दू लेखक और संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। युद्ध काल में ही उन्होंने अपना पहला महान उपन्यास सेवा सदन लिखा। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। बाजार ए हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की, फिर उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। वह अब हिंदी और उर्दू दोनों में लिखने लगे थे। जहां कभी पहले उर्दू में लिखकर उसे हिंदी में ढालते थे तो कभी हिंदी में लिखकर उसे उर्दू में भी ले जाते थे। हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की विशेष ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। उन्हें हिंदी समाज में प्रेम पूर्वक उपन्यास सम्राट पुकारा जाता है। हिंदी उपन्यास के इतिहास में उनके समय को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। वह हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद के साथ वह हिंदी कहानी की विकास यात्रा में एक युग का निर्माण करते हैं। उन्होंने उद्देश्य पूरक कहानियां लिखी हैं जहां जीवन की सच्चाई को भाषा की सहजता सरलता में प्रकट किया है। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की जबकि कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। लेखन के आरंभिक दौर में उन्होंने टैगोर की कहानियों का भी अनुवाद किया था। प्रेमचंद ने विपुल मात्रा में वैचारिक गद्य भी लिखा जो उस दौर की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। स्वयं एक संपादन और पत्रकार के रूप में उन्होंने समय और समाज के मसलों पर गंभीर टिप्पणियों के रूप में योगदान किया। प्रेमचंद की रचनाओं का देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी रचनाओं पर फिल्म का निर्माण हुआ है और उनके नाट्य मंचन किए गए हैं। प्रेमचंद 8 अक्टूबर 1936 को हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वे अपनी कृतियों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। वे केवल एक लेखक नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक थे। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें अपनी मानवता को नहीं खोना चाहिए। आशा है कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित यह वार्ता आपको उनके व्यक्तित्व के नए आयामों से परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था कलम के सिपाही, मुंशी प्रेमचंद का जीवन और संघर्ष, और वार्ताकार थे देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आप जानते हैं कि बदलते हुए इस मौसम में हमारा स्वास्थ्य और हमारा खान पान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और इसी परिवर्तन के तहत जब भी मौसम बदलता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्दी से गर्मी या बारिश से ठंड के संक्रमण काल में वातावरण का तापमान और नमी तेजी से बदलती है जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। इस समय हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को बाहरी माहौल के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ता है जिससे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमारा खान हमारे लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों इस दौरान आयुर्वेद के अनुसार ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए और मौसमी फल तथा ताजी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए

पानी, नारियल पानी और खीरा जैसी ठंडी चीजें खाएं, और वहीं सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और आंवला हमारे लिए फायदेमंद साबित होते हैं। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भोजन में अदरक, तुलसी, हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसालों को शामिल करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस संवेदनशील समय में अत्यधिक तला भुना, मसालेदार और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन सही रहता है। दोस्तों, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सही खान पान और थोड़ी सी सावधानी और अनुशासित जीवन शैली अपना कर ही हम बदलते मौसम में खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं।

दोस्तों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते,

0: लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो अच्छी आदतें अपनाएंगे जैसे कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी, और वही तय करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। अब कार्यक्रम युवाणी से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्री को। नमस्कार।
1: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। और सावन महीना का पहली रिमझिम फुहार के साथ हम जुट गए बैठकी में आप सबके साथ अपना कार्यक्रम में, जेकर नाव है घरनी। और ये आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोगन बरखा के आनंद के साथ साथ अपन स्वास्थ्य के प्रति भी सजग हुई हैं बहन लोगन, और सजग होखल भी बहुत जरूरी बा। काहे कि देखा कहल जाला ना जहान में कि पहला सुख निरोगी काया, और ये बिल्कुल सही बात बा बहन लोगन। देखे अगर स्वस्थ तन मन रहेला तो हर काम हर बात कहे सुने में अच्छा लगेला। वहीं अगर मन आपन उदास बा या फिर तन आपन बेजार बना तो कुछ ठीक नहीं लगेला, ना केहू का बात विचार, ना कहीं घूमल फिरल। ऐसे देखा सबसे पहले जरूरी बा अपन खान पान के दुरुस्त रखल, संतुलित आहार ना खाली हमार देखा आज बढ़िया बनौले रहेला बल्कि भविष्य भी स्वस्थ बनल रहेला। स्वस्थ और संतुलित आहार जैसे प्रोटीन बा, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, फाइबर, माने तमाम तरह के जो तत्व पावल जाला, पानी बा एकरे साथ साथ, एक हम लोगन के प्रतिदिन अपने भोजन में जोन भी बा अलग अलग तरीके को के शामिल करे के चाहिए। अब एक देखा विस्तार से समझल जाए बहन लोगन की प्रोटीन का जोन स्रोत बा, प्रोटीन जमे पावल जाला जैसे दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, दूध दही पनीर बा। अब देखा सावन का महीना चल रहा बा तो मांसाहारी के तो बात कई बिल्कुल ठीक नहीं बा, लेकिन वैसे देखा जान लेहल जाए, जानकारी रखे के चाहिए। अंडा और मछली में भी प्रोटीन के मात्रा पावल जाला। वसा देखा तेल, घी, बादाम, अखरोट तेल जैसे सूरजमुखी के बाद जैतून के तेल है, माने जोनी चीज में देखा तैलीय महसूस होके वो देखा मन वसा पावल जाला। कार्बोहाइड्रेट बा जैसे गेहूं का रोटी बा, दलिया है, चावल है, आलू आदि बा। विटामिन खनिज तो देखा वैसे सब में पावल जला थोड़ा थोड़ा, वैसे देखा मौसमी फल साग सब्जी से देखा ये प्राप्त होला। फाइबर और जोन भी फाइबर के अगर कहल जाए कौन चीज में तो देखा ये रेशा वाली साग सब्जी चाहे छिलका सहित अनाज सलाद में पावल जला है कि हम लोगन के खाए के चाहिए। और पानी तो बहन लोगन देखा कम से कम हम लोगन के 8 से 10 गिलास जरूर रोज पिए के चाहिए। शरीर में देखा पर्याप्त पानी बनल रहेला तो शरीर और मन स्वस्थ रहेला। बाकी सब देखा मिला के शरीर के स्वस्थ और मजबूत बनोले रहे खातिर के अपन देखा भूमिका निभावत रहेले। और बहन लोगन देखा बातचीत तो आगे होत रही चूंकि देखा सावन के पहली बैठकी महीना में, मतलब पहली बैठकी लगल बा। वैसे तो देखा अगस्त के महीना शुरू हुई काल से, लेकिन सावन जो लगल बा तो देखा काल से, मतलब 30 तारीख से ही लगल है। तो भाई देखें मन फेर होके के चाहिए। और देखें आज शुक्रवार के दिन है, शुक्रवार के हम लोगन भोजपुरी फिल्म संगीत के गीत सुनीला जा, तो चला एक ठे मन फेर हो जाए फिल्म सुहाग से। आवाज़ है उदित नारायण और प्रिया भट्टाचार्य जी के।

0: तो बहन लोगन देखा कितना बढ़िया मन फेर सुने के मिलल और सही बात बा। देखा मन फेर सुन करके ना मन एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाला, आनंद आ जाला। और भोजपुरी फिल्म के नाम रहल है सुहाग से और आवाज रहल उदित नारायण और प्रिया भट्टाचार्य जी के। देखा बिल्कुल सबकर सुहाग बनल रहे, भगवान बनौले रहे, सबकर लम्हार उम्र करत रहे। देखे आज मुंशी प्रेमचंद जी के जयंती भी है, आज उनकर 146वीं जयंती मनावल जा रहा बा। उनकर देखा जन्म 31 जुलाई 1880 के भयल रहल। और देखें हमन के बीच नहीं हवन अपने शरीर से, लेकिन उनकर व्यक्तित्व उनकर कृतित्व तो जन बना सदा खातिर अमर हो गया। और मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास रहल रचना है जौन देखा अपना आप में विशेष बा, जैसे उपन्यास गोदान गबन सेवा सदन कहानी बा कफन ईदगाह पूसबा, मतलब बहुत सारा ऐसा इनकर पुस्तक बा जेके पढ़ले से कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिलेला। और खास तौर से देखा अपने साहित्य में नारी चेतना का चित्रण व्यापक और बहुआयामी कैले हुआ। उनकी रचना में देखा महिला लोगन के खाली संघर्षशील और स्वाभिमानी ही नहीं बल्कि उस समाज का धारा के भी बदले के क्षमता रखेली, वो ऐसा मतलब अपने रचना में और साहित्य में लिखले हवन। अपना साहित्य के माध्यम से नारी चेतना के एगो नई दिशा और दृष्टि प्रदान कैले हवन जो की आज भी प्रासंगिक बा और समाज के प्रेरित करेला। बहन लोगन देखा आज हम लोगन जानकारी भी शामिल कैले है जा कुछ मतलब देखा इससे जुड़ल तो रहे बा, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर जुड़ले रहला कि देखा हम लोगों के अपने आप के स्वस्थ और निरोग रखे के बा तो योग और आयुर्वेद से भी जुड़ल बहुत जरूरी बा। ऐसे जुड़ल हम लोगों जानकारियां शामिल कैले है जा डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जो उनके आयुर्वेद शास्त्री है और उनसे हमारे बातचीत भयला। तो हम तो कहते हैं कि देरी बिल्कुल ना करे कि जानकारी सुनल जाए और गुनल भी जाए। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं इस भागदौड़ की जिंदगी में हम अपनी दिनचर्या सही ढंग से जीना जैसे भूल से ही गए हैं। न खाने का सही समय, न सोने का सही समय, बस काम काम और काम। इस काम के चक्कर में हम तमाम परेशानियों से घिरे जा रहे हैं, जैसे तनाव चिंता उलझने ये सब कुछ। और इन सब उलझनों को सुलझाने का अगर कोई तरीका है तो वो है योग और आयुर्वेद। क्या आपको पता है कि इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और हम इसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं और जानते और समझते हैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी से जो कि आयुर्वेद शास्त्री हैं ओबरा में। तो अजय कुमार शर्मा जी आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब। स्वस्थ तन मन और जीवन तो सब कुछ चाहता है, परंतु इसके लिए उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका उनको सही ज्ञान नहीं होता है। ये तो सबको पता है कि योग और व्यायाम से लाभ ही लाभ होता है, पर लोग इसके लिए समय नहीं निकालते हैं। तो सबको इसके बारे में बताएं कि ये योग क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: देखिए योग एक बड़ा वर्जन है और इसको अगर हम दो बिंदुओं पर देखें, आज की जो परिस्थिति है उस पर किसी भी चीज को हम दो आंकड़ों पे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा आंकड़ा है वो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि योग क्या है।
0: जी।
1: जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है योग, योग का मतलब होता है जोड़, एक जुड़ाव।
0: जी।
1: शरीर का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा का परम परमात्मा से जो एक मिलाप है उसका एक माध्यम है योग।
0: अच्छा।
1: योग हमारे शरीर को, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा और जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो स्वस्थ आत्मा होगी और जब हमारी आत्मा स्वस्थ होगी तब हम परम परमात्मा से जो साक्षात्कार कर सकते हैं जो हमारे जीवन का मूल है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो योग एक शारीरिक क्रिया विज्ञान है, जो हमारी क्रिया हमारे शरीर की जो सही और क्रमबद्ध जो क्रियाएं हैं उससे योग का उसकी उत्पत्ति होती है।
0: अच्छा।
1: और ये योग जो है हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे योग के विषय में कहा भी जाता है योगस्य चित्तस्य वृत्ति निरोगः, कि योग के माध्यम से हम केवल अपने शारीरिक नहीं मानसिक विकार जैसे क्रोध लोभ लालच इन सब चीजों पे भी, ये जो मानसिक विकार हमारे हैं,
0: तनाव है
1: ये सारे हमारे मानसिक विकार भी योग के माध्यम से दूर होते हैं।
0: जी शर्मा जी देखें

0: योग के साथ साथ आसन की भी चर्चा करते रहते हैं, तो ये बताएं कि ये योग और आसन क्या एक ही बात है या फिर दोनों में अंतर होता है?
1: योग तो हमारे जो हमारे ऋषि महर्षि थे
0: जी
1: उनसे लाखों वर्ष पहले से किया जाता रहा है, लेकिन आम जनमानस के लिए महर्षि पतंजलि ने जो इसको सूत्रबद्ध किया, योग में 84 आसन और 8 प्राणायाम के जो उन्होंने लोगों को बताया। और
0: अच्छा
1: आसन की उपयोगिता यह है कि जैसे हम कंप्यूटर को देखते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
0: जी
1: दो पार्ट्स हैं उसके, तो
0: अंदर और
1: हमारे
0: बाहर दोनों
1: जी
0: के कार्य
1: हमारे
0: करने
1: शरीर
0: वाले
1: के
0: हैं।
1: भी जो है वो दो पार्ट्स हैं, हमारे बाहरी जो पार्ट्स हैं वो, और हमारे आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर जो
0: अंग
1: तंत्र
0: है
1: लगे
0: जो
1: हुए हैं
0: जी
1: उनको। तो
0: अच्छा
1: आसन के माध्यम से हम हमारी जो शरीर की बनावट है, शरीर के जो अंग है उनको, बाहरी अंगों को हम ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं, उनको एक गति देते हैं।
0: जी
1: लेकिन प्राणायाम के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो तंत्र लगे हुए हैं
0: जी
1: उन तंत्रों को ठीक करते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पाचन तंत्र,
0: अच्छा
1: क्योंकि आयुर्वेद की मान्यता है कि हमारा अगर पाचन सही है तो सब कुछ सही है, क्योंकि सारे रोगों की उत्पत्ति हमारी जो है
0: पेट
1: वहीं
0: से ही
1: पेट
0: होते
1: से ही
0: हैं
1: होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो हमारे प्राणायाम है वो हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक करते हैं, और जितने जैसे प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, जिसके माध्यम से हम तनाव को सर से लेकर के जो हमारे सीने के पास सूर्य चक्र का हिस्सा
0: जी
1: है,
0: जी
1: यहाँ इस में जो संबंधित बीमारियां हैं, जहाँ कफ की प्रधानता होती है,
0: अच्छा
1: जैसे श्वास, दमा, एलर्जी, साइनस, इन सब बीमारियों में भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत अच्छा लाभ है। दूसरा प्राणायाम करते हैं कपालभाति, जिसमें श्वास को केवल छोड़ना है, इससे हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, सबल होते हैं। और
0: अच्छा
1: ये कपालभाति प्राणायाम विशेष महत्व करता है हमारे पाचन क्रिया को।
0: अच्छा
1: उसमें जब हम करते हैं तो हमारे सांसों के माध्यम से हमारी शरीर की जितनी भी विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है
0: वो
1: वो
0: बाहर आती
1: सांसों
0: है
1: के माध्यम से बाहर आते हैं।
0: जी
1: उसी
0: जी
1: तरह से वायु प्राणायाम है, उज्जायी प्राणायाम है,
0: अच्छा
1: अनुलोम विलोम है, जो हमारे हृदय को ताकत देता है, हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन को पूरा करता है, ऑक्सीजन लेवल की कमी से जो बीमारियां वो ठीक होती है। अनुलोम विलोम के माध्यम से
0: जी
1: भ्रामरी प्राणायाम है, जो तनाव को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, अनिद्रा को दूर करता है।
0: जी
1: उसके बाद उज्जायी है, ध्यान है, ये सारे प्राणायाम क्रमबद्ध हमारे शरीर की एक एक क्रिया को ठीक करते हैं और हमको आरोग्य देते हैं।
0: अच्छा देखिए ये भी कहा जाता है कि योग और आयुर्वेद जो है एक सिक्का के दो पहलू
1: जी
0: हैं,
1: जी बिल्कुल
0: तो इसके बारे में बताएं कि इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में और ये योग और आयुर्वेद का संबंध क्या है?
1: देखिए, योग और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: जी
1: कुछ बीमारियां हैं जहां पर आयुर्वेद से जल्दी वो योग करें योग से ठीक हो जाती है, जो बीमारियां योग से नहीं ठीक होती वो आयुर्वेद की औषधियों से ठीक हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल
1: चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा की ये दोनों एक अभिन्न अंग है। इन दोनों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं
0: जी
1: या कष्ट साध्य बीमारियां हैं, इन दोनों के प्रयोग से दोनों इन सभी सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है।
0: जी देखिए ऐसा कहा जाता है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद और योग दोनों को ऋषि मुनियों ने जन्म दिया है और दोनों ही चिकित्सा पद्धति को अपने जीवन का अंग बनाया। इस आयुर्वेद में एक बात आती है त्रिदोष शब्द की, तो ये क्या चीज है?
1: सबसे पहली चीज तो आयुर्वेद जो है वो केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है आयु का विज्ञान। वह विज्ञान जो आपको आरोग्य दे और दीर्घ आयु प्रदान करे वो है आयुर्वेद।
0: जी
1: आयुर्वेद चिकित्सा में जो हम रोग परीक्षण करते हैं, जैसे आज हम मॉडर्न पैथी में किसी भी रोग के विषय में जानना होता है
0: जी
1: तो तमाम उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं,
0: हाँ,
1: अल्ट्रासाउंड कराते
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: या और तमाम जो टेस्ट है उनके माध्यम में उसे ये पता करते हैं कि कौन सी बीमारी है। आयुर्वेद चिकित्सा में वात, पित्त, कफ, इन्हीं त्रिदोषों से समस्त बीमारियां इन्हीं के कारण उत्पन्न होती है।
0: अच्छा
1: जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का निर्माण होता है,
0: अच्छा
1: और ये जब इनका बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ जाता है तब बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा में किसी कारण की चिकित्सा नहीं होती, किसी लक्षण की चिकित्सा नहीं होती।
0: अच्छा
1: वहां पे आपके वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों को साम्य अवस्था में करने का ही प्रयास किया जाता है, और ये जब वात, पित्त, कफ आपके साम्य अवस्था में हो जाएंगे बीमारी स्वतः आपकी दूर हो जाएगी।
0: जी तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आयुर्वेद में किस तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है?
1: देखिए, आयुर्वेद में हमारे आसपास जो भी दिख रहा है, पेड़ पौधे, लता पत्र, प्रकृति में जितनी भी चीजें आप देख रही हैं, वो सारी कहीं ना कहीं आयुर्वेद चिकित्सा की जो है औषधियां हैं। यहाँ तक कि हमारी जो माताएं बहनें किचन में जितने भी मसाले यूज कर रही हैं वो सभी औषधियां हैं। और इन औषधियों से मैं बता दूं जो हमारे उन मसालों के विषय में, छोटी छोटी बीमारियां नहीं, जो बड़ी बीमारियां हैं उनके विषय में बताता हूँ आपको कि इनसे हम किस तरह से जो प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे एक आम बीमारी हो गई है मधुमेह, शुगर,
0: जी, शुगर की,
1: हर घर में दो मरीज तीन मरीज के मिल रहे हैं।
0: बिल्कुल, एक तरह से आनुवंशिक हो गया
1: है।
0: बिल्कुल,
1: और मधुमेह का इलाज हमारे घर

0: के किचन में है।
1: अच्छा।
0: सबसे पहला हम लोग मसालों में मेथी का प्रयोग करते हैं। अगर मेथी का पाउडर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम भोजन से आधे घंटे पहले लिया जाए, 1 चम्मच जो है
1: अच्छा।
0: अगर दिन में 3 बार लिया जाए तो बिना किसी औषधि के हम मधुमेह को कंट्रोल में रख सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: और दूसरा हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं करेला।
1: जी बिल्कुल।
0: सप्ताह में 2-3 दिन जिनका शुगर लेवल बढ़ा हो वो करेले का जूस ले सकते हैं सुबह खाली पेट, वो भी आपके मधुमेह को जो है वो कंट्रोल करेगा।
1: अच्छा।
0: थायराइड, विशेषकर महिलाओं में थायराइड जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसमें हमारे घरों में यूज होता है सूखी धनिया। अगर सूखी धनिया का शरबत जो है सुबह खाली पेट लिया जाए तो हमारे थायराइड को नियंत्रित करने में हमारा सहयोग करता है। इसके साथ साथ लीवर सिरोसिस की समस्या है, लीवर की समस्या बहुत तेजी से लोगों का लीवर फैटी लीवर होता चला जा रहा है, उसमें अगर हम हरी धनिया 1 गिलास पानी में लगभग 25 ग्राम हरी धनिया काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 गिलास पानी में खोलाएं और आधा बचने पे ठंडा हो जाने पे उसको खाली पेट पिए और 2 घंटे तक कुछ भी न लें तो हमारी लीवर की समस्या 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने में ठीक हो सकती है। किडनी की समस्या, किडनी फेल्योर के तमाम पेशेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर उसमें हम पीपल के पत्ते का रस और नीम के पत्ते का रस 1/4 चम्मच देना शुरू कर दें 3 महीने तक सुबह शाम, तो कैसा भी पेशेंट हो जो डायलिसिस पे है वो भी पेशेंट ठीक हो सकता है। ये आयुर्वेद के चमत्कार हैं। हम घरों में अपने जो औषधियां जो हम मसाले यूज कर रहे हैं, दालचीनी के विषय में बता दूं कि ये प्री डायबिटीज, जैसे किसी को डायबिटीज अभी हुई नहीं है, डायग्नोस नहीं हुई है, होने वाली है, अगर वो दालचीनी पाउडर यूज करें तो उनको डायबिटीज से बच सकते हैं। एक बहुत बड़ी आपदा आजकल चल रही है हार्ट अटैक की, जिसको देखिए हार्ट अटैक की बीमारी जो है
1: जी।
0: तो इसमें हम कई बार ये होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता, बीच में ही दम तोड़ देता है।
1: बिल्कुल।
0: आए दिन आप हार्ट अटैक की समस्या देख रही हैं और जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: और हार्ट अटैक की समस्या जो है हमारे के जो घरेलू महिलाएं हैं वो उसका इलाज कर सकती हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा दे सकती हैं। कभी भी किसी को हार्ट अटैक की समस्या हो उसकी पहचान ये है कि व्यक्ति को बाईं तरफ सीने में दर्द होता है।
1: अच्छा।
0: साथ में बाएं हाथ में दर्द होगा और जबड़े में भी दर्द की शिकायत होती है।
1: अच्छा।
0: जब भी ये कंडीशन हो तो ये समझ जाए कि व्यक्ति को हार्ट अटैक का लक्षण है
1: जी।
0: उस समय उस व्यक्ति को अदरक दे दें, आप अदरक चबाए और इतना चबाए कि जो है वो आंख से आंसू निकल जाए, उससे क्या होगा कि आपको एक समय मिल जाएगा और आपका जो ब्लॉकेज है वो दूर किया जा सकता है। ये जो हमारे ब्लॉकेज को खत्म कर सकता है, नींबू अदरक और लहसुन का रस जो है उसको अगर हम शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो हमारे ब्लॉकेज की जो समस्या है, जो हार्ट अटैक का कारण है, वो ठीक किया सकता है और एक समय मिल जाता है आपको कहीं किसी हॉस्पिटल
1: डॉक्टर के पास
0: पहुंच करके और उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो हमारी महिलाएं अपने रसोई से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। अच्छा, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे इस आयुर्वेद और योग के बारे में?
0: जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से कुछ वर्षों पहले आप देखिए जब कोई बीमारियां होती थी तो लोग दवाइयों से ज्यादा जो दादी नानी के इलाज होते थे उनका इस्तेमाल करते थे और छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां थी वो सभी ठीक होती थी। और हमारे घर की अगर महिलाएं चाह जाएं तो जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन सभी का इलाज आपके आसपास है, बस उसको जानने की पहचानने की जरूरत है, नेचर से जुड़ने की जरूरत है। जितने मसाले हम यूज कर रहे हैं इनसे बड़ी से बड़ी बीमारियां को हम ठीक कर सकते हैं। और आप प्रकृति से जुड़े, योग से जुड़े, अगर महिला अगर बीमार हो जाएगी तो पूरा घर जो है बीमार हो जाएगा, इसलिए महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे श्रोता है इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी से बस इतना कहूंगा कि आयुर्वेद जैसा मैंने कहा कि कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन शैली है और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है निरोगी काया। आज हम लोग जरूर समझते हैं कि पैसा मिल जाए तो सुख हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब तक जीवित रहिए, निरोगी रहिए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और इसके लिए आपके पास 2 ही माध्यम है, योग और आयुर्वेद।
1: जी, तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थे डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, जो कि आयुर्वेद शास्त्री हैं ओबरा में। श्रोताओं, योग और आयुर्वेद दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो योग और आयुर्वेद के साथ अपने जीवन को संतुलित करें, क्योंकि योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो वहीं आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का आधार भी माना जाता है और ये दोनों ही प्रकृति से जुड़े हैं। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण का भी ध्यान दें और योग के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति खुद भी जागरूक हों और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो बहन लोगन, देखा संदेश पे सुनल गेल और भाई उससे पहले जो जानकारी रहा कि योग और आयुर्वेद जीवन के लिए वरदान और बिल्कुल सही भी बात बा। विषय पर डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जो उनके आयुर्वेद शास्त्री हवन, उनसे हमार बातचीत रहा। निश्चित तौर पे देखा जरूरत बा सुननी जा तो एक एक गुने के भी जरूरत बा, और स्वस्थ रहे के खातिर देखा योग से जुड़े के जरूरत बा। देखा ऐसे तनाव दूर होला और स्वस्थ रहे के खातिर स्वच्छ पानी भी पियल बहुत जरूरी बा। खास तौर से बरसात में देखा पानी के हमेशा उबाल के ठंडा करके पियल जाए, काहे कि देखा बरसात में छोट छोट कीटाणु रहलन तो के साफ अगर उबाल लिया जाए तो साफ हो जाला। घड़ा में लंबी नाड़ी वाली जोन बाकी कड़ुआ से काढ़ के निकालल जाए, जब थीर आ जाए तो के तब छान के पियल जाए तो स्वस्थ रहल जाए। स्वस्थ रहे खातिर सबके ये बात का ध्यान रखे के चाहिए। तो देखें इनके धन्यवाद देवल जाए, लेकिन एक और मन फेर के साथ और फिल्म के नाव हमारे से हिंदुस्तानी से अब सुनल जाए गीत।

शुरुआत हो गई, दिल के बात हो गई। बिल्कुल, देखें बरसात जब आवेला तो तमाम तरह की खुशियां भी लेके आवेला, लेकिन ओकरे साथ साथ देखाइयो हो कहल चाहब कि जीवन में देखा सुख दुख धूप छाँव के तरह आवत जात रहेला। दुख में ना हिम्मत हारे के चाहिए और सुख में ना लोगन के बिसारे के चाही। ये हमेशा हम लोगन के ध्यान रखल जाए, जीवन देखा सुखमय रहे। और बहन लोगन देखा अपने स्वास्थ्य का ध्यान ये बरसात में खास तौर से रखें, और बचवन का बिल्कुल कहें कि देखा ये बरसात में जोन बना छोट बचवन तो निकल जाला खेले और उसी भीजल कपड़ा का वो पानी में ही बरखा में भी भीज जालन, तो कपड़ा देखा तुरंत बदल देवे के चाहिए बचवा लोगन के। कहें कि देखा भिजले से भी तमाम तरह के चर्म रोग हो जाला, सर्दी जुकाम तो बिल्कुल घरजनिया हो गल बा, अगर एक जने के घरे में हो गल तो सबके धर लेवेला। तो स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें लोगन के, यही मंशा के साथ चला चले के। तो सब बहन लोगन के राम राम।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज भइल कैबिनेट बैठक में 5,070 करोड़ रुपया का प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY के मंजूरी दे दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में भइल फैसलन के बारे में जानकारी देना है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। आज 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर PV फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। PM किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है।
0: कैबिनेट PM किसान योजना के 2030-31 ले जारी रखलहु के मंजूरी दे दरस। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के अवधि बदे कुल 36,441 करोड़ रुपया के बजट के साथ ही खेलो इंडिया योजना के विस्तार, राष्ट्रीय खेल महासंगठन के दिहल जाए वाले सहायतों में बढ़ोतरी के मंजूरी दिहल गये। लोकसभा में आज जन्म आ मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गये। यह विधेयक का उद्देश्य जन्म आ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कैल हो।
2: इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के तैयारियों का समीक्षा कैले।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेड शो केवल व्यापार प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच है। उन्होंने निर्देश दिए कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो का देश विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, उद्यमियों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता हो। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल का 172वां बैठक भइल। ए मौका पर वहां के मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ोले का निर्देश देनी ताकि ढेर से ढेर पात्र विद्यार्थियों के एकर लाभ मिल सके। आज महान कथाकार आ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जयंती मनावल जा रहा हो। ए मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दिले। हमें एक क्रम में उनके पुस्तैनी गांव लमही के मुंशी प्रेमचंद स्मारक पर आज लमही महोत्सव 2026 को आयोजन कैल गईल। ए मौका पर हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देवे वाले कई गो साहित्यकारन के सम्मानित कैल गईल। कार्यक्रम में वक्ता लोग मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व आ कृतित्व के बारे में चर्चा कैले। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस आ समकक्ष पदन पर सीधी भर्ती 2025 के लिखित परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया है।
4: अभ्यर्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर अपना परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के

0: लेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं ऊंची बिहनी कुछ जगहों पर बरखा गरज चमक के साथ है बौछार पड़ने की संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। भोला भैया देखा मसूरी बसुरी और जनबा अपन डफली का जो लयकारी धुन रहल वो जब अपने बरखा के साथ फुहार बन के मिलल है ना तो देखा पंचायती का रंग भी देखा एकदम में निखर जाला।
1: क्या बात भैया, ठीक आप कहलन। ये बैर जनबा की जनपद में लगभग हर गांव गांव में बकरी तो बरसत बा, लेकिन अपन धरती हरिये चुनरी ओढ़ के मुस्कुरा रहल बा और खेत खलिहान में किसान के चेहरा पर नया उमंग भी झलकत बा।
0: बिल्कुल देखत है कि आप मौसम के बात करत हुए और गांव ग्राम में अपने आवे वाले दिन में कैसन मौसम का हाल रही एक विषय में हमहन का बतावल जाए। हम तो कहते हैं कि एक मौसम वैज्ञानिक हुआ शिवमंगल सिंह भैया बेचू का उनसे पहले जानकारी ले करके तब फिर हमहन अपन बतकई आगे बढ़ावल जाए।
1: सुनल जाए
2: किसान भाई लोग देखे हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में मौसम का बहुत बड़ा अहम भूमिका है और मौसम पर ही हम लोगन का खेती बाड़ी आधारित होलै और शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक अपन मौसम कैसन रही एकरे बारे में आज देखे हमार संपर्क हो गल बा शिवमंगल सिंह साहब से जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हम और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि आवे वाला चार दिन मौसम का कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम अगले 3-4 दिनों की बात कर लें तो मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले दिनों में जो है बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।
2: जी जी।
3: जिसके परिणाम स्वरूप जो है कहीं कहीं हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान की जो सीमा रहने वाली है अगले 3-4 दिनों तक वो है 31 से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
2: जी जी।
3: और ऐसे में हवा की गति की बात करें तो वो सामान्य से अधिक ही रहेगी।
2: जी।
3: और सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर लें तो वो अधिकतम जो है 90+ रहेगा। देखें किसान भाई लोग अगर बरसात अच्छे से नहीं होत बा
2: जी
3: रोपाई आप लोगों का प्रभावित होत बा तो उमन भाई पानी की व्यवस्था जैसे कि अगर भगवान थोड़ा बहुत बरसत बहन मान ला अभी अनुमान भी बाकी थोड़ा बहुत बारिश हुई अभी अगले 2-3 दिना में
2: जी जी
3: तो उकरे बदे किसान भाई मेड़बंदी बहुत अच्छे से करें अपने खेत में और जौने खेते में रोपाई हो गल बा वो खेते में किसान भाई जो हो खर पतवार के नियंत्रण करे के उपाय अपनावे।
2: जी जी।
3: और जैसे कि झुलसा रोग होगल ब्लास्ट होगल के लक्षण दिखे तो उचित दवाई का प्रयोग करें खासकर धान के बाद बताओ थी भैया। और अगर मक्का की बात करें तो भाई मक्का में हल्का फुल्का बारिश होता तो भाई जल निकास की व्यवस्था तो करेगी पड़ी
2: जी,
3: और
2: जी।
3: साथ में ही अगर तना छेदक कीट का प्रकोप बढ़त बा तो ओकर आवश्यकता अनुसार जो नियंत्रण के उपाय हो
2: जी जी
3: रोग रोग व्याधि बदे भाई किसान भाई करें। और यही सही अरहर में भी किसान भाई विशेष ध्यान दे कि पीला मोजैक रोग और कीट का नियंत्रण का निगरानी करत रहे और ये सब खेतर में जो है हल्की निकाई गुड़ाई और पौधों के मजबूत बनाव का तरीका जो है ओके अपनावे
2: जी।
3: और पशुपालन के बारे में अगर बात करिए भैया तो पशुओं के जो है सूखा स्थान पे रखें तो ज्यादा बढ़िया बा और जैसा कि हम आपसे पिछली बार भी बताए रहे कि किसान भाई

0: क्योंकि पशुओं के जीवन इसमें चारा खिलाओ तुम भैया ना, बरसात में का होला कि भीग जाला है,
1: जी
0: तो अगर थोड़ा सा लापरवाही करिए तो किसान भाई जो हो उनकर पशु जो हो बीमार हो जाए
1: जी
0: तो ओकरे बदे परेशानी उठाओ पड़े किसान भाई के, ऐसे पशुओं के भी विशेष ध्यान देवे जरूरत भैया।
1: बिल्कुल एकदम सही बात कहत हुआ डॉक्टर साहब। जौन अपन किसान भाई लोग हुआ ये जानकारी से जरूर लाभ उठाई हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बोला भैया
1: हाँ चलो भैया।
2: देखा भाई हमारे जन बा मौसम के जानकारी सुनत रहली जा श्री मंगल सिंह भैया के माध्यम से जौन की मौसम वैज्ञानिक रहलन BHU का,
1: बिल्कुल
2: तो बड़ा अच्छा जानकारी दे रहे ओकरे हिसाब से किसान भैया भी लोग अपने गांव ग्राम के लोग भी जौन बा सुन करके उसे फायदा लिहन।
1: बिल्कुल
2: और देखा अपन जौन जनपद बना भोला भैया
1: हाँ
2: वो
1: भैया
2: प्रकृति का एकदम अनमोल उपहार से भरल बा। यही जा देखा हरियर पहाड़ घनघोर जंगल झरना और नदी सबकर जौन बा यहाँ का लोगन का मन मोह ले वाला,
1: बिल्कुल
2: चाहे वो रिहंद हो चाहे कनहर हो चाहे सोन नदी, ये धरती के जीवन देवे वाली धारा होई। और देखा बरखा के मौसम में पहाड़ी इलाका और सुंदर लगेला,
1: बिल्कुल
2: जंगल में देखा कई तरह के जीव जंतु और पक्षी जौन बा अपने प्रकृति के शोभा भी बढ़ावेलन।
1: यही खातिर तो भैया दूर दराज के लोग यहाँ के जौन बाकी छठा देखे खातिर आवला लोग,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: और इस सुंदरता के बचाए तो भाई हम लोग की जिम्मेदारी बनला। अब देखा कि जंगल अगर प्रतिदिन कटाई और जो है कि पानी नहीं रहे माटी इत्यादि एक अगर संरक्षण हम लोग नहीं कर लिया तो निश्चित रूप से ये
2: प्रकृति
1: सुंदरता
2: खतरा
1: खत्म
2: पड़
1: हो
2: जाए।
1: जाए,
2: बिल्कुल
1: और जब
2: बिल्कुल
1: सुंदरता खत्म हो जाए तो के निहारे आई भैया,
2: सही कहते
1: तब
2: हो।
1: पर्यावरण संतुलित रही तब तो जीवन के खुशहाल बने भैया। इसने में हमन के भी अपने जिला के प्राकृतिक धरोहर के मिल करके आपस में तब जाके बचाव लेके
2: बचाव
1: जरूरत
2: के
1: चाहिए।
2: जरूरत बा, बिल्कुल
1: बिल्कुल
2: सही कहत हुआ ना। देखा अपने जनपद में जंगल और पहाड़ी इलाका में बरखा के दिन में देखा एगो और चीज थोड़ा सा समस्या होले
1: हाँ हाँ
2: कि
1: हाँ हाँ
2: सांप
1: हाँ
2: बिच्छू थोड़ा सा ढेर निकले ले।
1: बहुत बहुत
2: तो
1: भैया
2: इसने
1: बहुत
2: में
1: सही
2: देखा
1: बोले।
2: खेते में हो चाहे घरे में चाहे गुहाले में हर जगह जनबा वो रास्ता पर जनबा अधिकतर सर्पदंश की घटना सुनाई देले।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और ऐसा समय में घबरेला से काम नहीं चल रहा भोला भैया, सांप काटे पर झाड़ भूक जो झाड़ भूक के चक्कर पड़ जाला लोगन उसे ऊपर भरोसा न करल जाए, पीड़ित के बिल्कुल शांत रखें और बेवजह जनबा ओके चले फिरे न दें।
1: बिल्कुल भैया। और इतना तक भी जो है कि कुछ लोग तो जो बाकी सुता दे वाला लोग सोए के तक दम नहीं चाहे सर
2: बिल्कुल
1: कटला
2: बिल्कुल
1: पर, और
2: बिल्कुल
1: कितना
2: हमेशा
1: जल्दी
2: जगावे
1: से
2: की जरूरत रहे।
1: बिल्कुल अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके नजदीकी अस्पताल में जोन बाकी ले जाए के चाहिए, और डॉक्टर से इलाज करे के जोन बाकी प्रयास करावे के चाहिए
2: वह
1: जितना जल्दी
2: सबसे
1: हो
2: सुरक्षित
1: सके,
2: तरीका
1: वह
2: भी हुआ।
1: सुरक्षित भी भाव।
2: बिल्कुल
1: और बरखा में भैया इसमें जोन बाकी जूता चप्पल इत्यादि पहन के चले के चाहिए, कहाँ काटा हाओ चाहे कहाँ सर्प, एक ठे करैत सांप हम लोग की तरफ बहुत प्रचलित है
2: बहुत
1: भैया,
2: ज्यादा बहुत
1: और
2: ज्यादा।
1: वो जब काटी ना पता नहीं चली कि तनिक भी मतलब न तो कहीं दांत ओकर कसल डाला और न कुछ नहीं पता चल कि जोन बाकी धीरे धीरे चक्कर आवे लगी। वो हमें अगर सूत जी हैं सूत एक हमें भैया एक तो सोए के नहीं चाहिए, दूसरा बात जोन बाकी वो हमें पानी नहीं पिए के चाहिए,
2: बिल्कुल
1: ये जहाँ
2: बिल्कुल
1: करिए विष बहुत तेज बढ़ा लो भैया।
2: बिल्कुल। और देखा आपदा जोन बा तनको बचा बता के नहीं आवेला बोला भैया, देखा कभी बाढ़ के समस्या होले तो कभी सूखा और कभी देखा आकाशीय बिजली तो कभी जोन बा सर्पदंश एकदम संकट बन करके आ जाला।
1: बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल
2: देखा ये हालत में धैर्य रखल हमान के सबसे जरूरी होला। और सबसे बड़ा चीज कि इस समय अफवाह का बाजार सबसे ज्यादा गर्म हो जाला, तो
1: बिल्कुल
2: ओपे
1: बिल्कुल
2: भरोसा बिल्कुल न करे के चाहिए। प्रशासन के सलाह और चेतावनी हमेशा सुनल जाए और ओकर पालन भी करल जाए।
1: बिल्कुल
2: और देखा
1: भैया
2: आपातकालीन नंबर भी जनबा अपने पास लिख करके रख ले के चाहिए।
1: हाँ, चाहे बचपन हो चाहे भैया बूढ़ा दिव्यांग लोग, इन सबन के लिए सबसे पहले सुरक्षित जगह पर पहुँचाए चाहिए, और एक दूसरा के मदद करे की खातिर भी जोन बाकी आपस में भावना ऐसा जुड़े के चाहिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सामूहिक सहयोग से हर संकट के सामना आसानी से कर जा सकला। संदेश बस इतने बा कि आपदा प्रबंधन तबे हो सकी
2: बिल्कुल
1: जब हम सजग रह करके और धैर्य के वजह से अपन जोन बाकी काम करब मिलजुल
2: बिल्कुल
1: करके।
2: बिल्कुल सही
1: बिल्कुल
2: कहलन। और सजग नागरिक जन होला भोला भैया उस समाज का सबसे बड़ा बल होला
1: बिल्कुल
2: और आपदा से बचाव इलाज से बेहतर उपाय बा। और पहले से तैयारी अगर करल जा सके तो उससे उमेन जान बचावल संभव हो सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और गांव गांव में जागरूकता अभियान अगर चले तो विद्यालय हो चाहे पंचायत हो चाहे स्वयंसेवी संस्था है, सब लोग अगर प्रशिक्षण जनबाबू मिल के लें तो ज्यादा अच्छा हो सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: प्राथमिक उपचार उपचार का जो जानकारी बा हर घरे तक उके पहुंचे के चाहिए। और देखा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण भी जनबा वो आपदा कम करे में मददगार साबित होला।
1: बिल्कुल अचलो भैया, या समझ चल जाए कि पर्यावरण सुरक्षित रही तब कई संकट जोन बाकी अपने आप घट जाए, धैर्य अनुशासन सहयोग ये सब चुनौती पर विजय मिले के जोन बाकी एक अच्छा संकल्प हो।

0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: समय समय पर अपन साहित्यकार लोग भी अपने कृति के माध्यम से और प्राकृतिक आपदा और सामाजिक संकट के उजागर करे में अपना जो
0: सहयोग दे ले
1: सहयोग
0: उन्हें,
1: करला लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसने में ही जोन बाकी मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में भी प्राकृतिक और सामाजिक संकट में मार्मिक चित्रण मिला ला भैया,
0: बिल्कुल
1: बशर्ते कि
0: बिल्कुल
1: अगर कहानी जब पढ़ी लो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ। और देखा उनकर जो कहानी रहल भूल भैया, जब हम मन पढ़त रही जा तो देखा उमेन पूस की रात, उमेन जका किसान जन रहलन हल्कू,
1: हल्कू
0: उ
1: बिल्कुल।
0: जन बा ठंड और गरीबी और विपत्ति से जूझत उमेन दिखावल गई बा। और देखा ये कहानी से सीख मिलेला कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और समझदारी ओसे जन बा संघर्ष जरूरी होला।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: देखा प्रेमचंद बतावलन कि विपत्ति अकेले नहीं टाल जा सकेला, बल्कि समाज के सहयोग और संवेदना
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी होला ओके टाले में। गरीबी भी देखा एक तरह के सामाजिक आपदा ही होला।
1: बिल्कुल अचलो भैया, ये निश्चित रूप से मानवीय सहयोग संकट के असर कम कर देवला, और धैर्य या तो हिम्मत से अगर कठिन समय में सामना कर जाए तो ये जो बाकी
0: हर
1: बिल्कुल
0: समस्या का
1: हर
0: समाधान
1: समस्या
0: निकल
1: के
0: सकले,
1: समाधान हो सकला,
0: बिल्कुल
1: और ये संदेश आज के आपदा प्रबंधन के सोचे के भी मेल खात बहन।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: यही कारण मुंशी प्रेमचंद जौन रहलन ये साहित्य अजूबो प्रेरणा देत बा।
0: बिल्कुल
1: मुंशी
0: बिल्कुल।
1: प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के अमर कथाकार रहलन, और वो हमेशा समाज के साँच के अपने कलम में
0: से लिखले
1: लिखलन,
0: रहन,
1: और
0: बिल्कुल
1: ओके जौन
0: बिल्कुल।
1: बाकी आज भी मतलब पढ़े लगी है तो लगता कि सजीव चित्रण है,
0: हाँ बिल्कुल सामने हो
1: सामने
0: रहल
1: घटित
0: बा,
1: घटना हो रहा है।
0: सही
1: बिल्कुल
0: कहते हो सही कहते हो। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे दलित के पीड़ा हो, उकर आवाज जोन बा मुंशी प्रेमचंद जी बनलन। और उनकर कहानी देखा एगो रहल ईदगाह, तो ईदगाह के माध्यम से भी देखा बहुत अच्छा चरित्र चित्रण कैलन। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसने में देखा हमन के आगे
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल
0: बढ़े के
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और भैया देखा है पंच परमेश्वर न्याय और निष्पक्षता संदेश लेवल के बारे में तरह तरह के जोन बा कि बड़े घर की बेटी परिवार में जेल जोल में महत्व बतावला, और दो बैलन के कथा जोन हो ओके बारे में जोन बा कि जोन वर्णन के लिए होन, पशु प्रेम और निष्ठा ये भी मिसाल बा एक उनका,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: उनका
0: सही
1: साहित्य
0: कहते।
1: पर जोन बा कि पीढ़ी से प्रेरित करला, और मुंशी प्रेमचंद जयंती पर हम सभी लोग उनका नमन करते हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: भैया प्रेमचंद समाज के बुराई पर खुल के लिख ले हों,
0: बिल्कुल सही
1: इसे
0: कहत
1: नमन के
0: हुआ भोला भैया।
1: देवता।
0: और देखा मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी उतने प्रासंगिक बा जैसन कि आप बतौलन, और उनकर विचार जन बा समाज के बेहतर दिशा दे सकेला।
1: बिल्कुल
0: और देखा हमन का बात बत कही तो होत रही, लेकिन आज के अपने पंचायती में साहित्यकार दीपक कुमार केसरवानी भैया भी जुट गए हुए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संसार, एकरे बारे में देखा अपने पंच भैया लोगों से का बातचीत करत हुए, तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए पहले उनके सुन
1: बिल्कुल
0: ले
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: भैया सुना दे।
2: आज 31 जुलाई है, आज ही के दिन सन 1880 ईस्वी में वाराणसी से 15 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में मुंशी अजायब राय एवं आनंदी देवी के घर कलम का सिपाही सुप्रसिद्ध कथाकार नाटककार उपन्यास सम्राट संपादक गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। वाराणसी संसदीय क्षेत्र का कस्बा लम्ही आज से लगभग 146 वर्ष पूर्व एक गांव था। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और भारतीय ग्रामीण परिवेश जीवन शैली सांस्कृतिक उत्सव रामलीला मेला घटनाओं किरदारों से प्रेरित होकर किसानों सोस्तों के यथार्थ पर आधारित उपन्यास गोदान रंगभूमि प्रेमाश्रय कहानी कफन पंच परमेश्वर दो बैलों की कथा रामलीला के बहुत सारे पात्रों को इसी गांव से उठाया और उन्हें अपने साहित्य में स्थान दिया। वाराणसी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में वर्णित लम्ही गांव से बहुत प्रभावित हुए हैं। रेडियो कार्यक्रम मन की बात 2.0 की पहली कड़ी में उन्होंने कहा था, प्रेमचंद ने अपने कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात ज्वलंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियाँ मेरे मन को छू गई। उनकी कहानियों में समूचे भारत का मनोभाव समाहित है, जब मैं उनकी लिखी नशा नामक कहानी पढ़ रहा था तो मेरा मन अपने आप समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं पर चला गया। मुझे अपनी युवावस्था के दिन याद आ गए कि हम कैसे इस विषय पर

रात भर बहस करते थे। जमींदार के बेटे ईश्वरी और गरीब परिवार के वीर की कहानी से सीख मिलती है कि अगर आप सावधान नहीं हैं तो बुरी संगति का असर आप पर चढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता। दूसरी कहानी जिसने मेरे दिल के अंदर को छू लिया वह थी ईदगाह। एक बालक की संवेदनशीलता, उसका अपनी दादी के प्रति विशुद्ध प्रेम, उतनी छोटी उम्र में इसका परिपक्व भाव, 4-5 साल का हामिद जब मेले से चिमटा लेकर अपनी दादी के पास पहुंचता है तब सच मायने में मानवीय संवेदना अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस कहानी की आखिरी पंक्ति बहुत ही भावुक करने वाली है क्योंकि उसमें जीवन के एक बहुत बड़ी सच्चाई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। ऐसे ही एक कथा बड़ी मार्मिक कहानी है, पूस की एक रात। इस कहानी में एक गरीब किसान अपने जीवन की विडंबना का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। अपनी फसल नष्ट होने के बावजूद हल्को किसान इसलिए खुश हो जाता है कि जब उसे कड़ाके की ठंड में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि ये कहानियां लगभग सदी भर पहले की हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी इतनी महसूस होती है तो जैसा पहले होती थी। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पीछे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह और उसके नायक हमीद का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन संघर्षशील रहा। अपने शुरुआती जीवन में चुनार, गोरखपुर, हमीरपुर में सरकारी नौकरी किया और वाराणसी, मिर्जापुर, रावर्सगंज के ग्रामीण शहरी परिवेश, किसानों, स्त्रियों की समस्याओं, शोषण, स्थानीय संस्कृति, साहित्य, कला, लोक कला से परिचित हुए और अपने साहित्य में इसका चित्रण किया। मुंशी प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन नवाब राय उपनाम से आरंभ किया। उर्दू भाषा में असरारे मुआदिद देवस्थान रहस्य नाम के उपन्यास लिखकर अपने साहित्यिक सफर को आगे बढ़ाया। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन देश का मातम लिखा और इसका प्रकाशन कानपुर से कराया, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों के को भजन के शिकार हुए। इसकी 500 प्रतियां इनके आंखों के सामने ही जला दी गई। इसके बाद इन्होंने धनपत राय व नवाब राय का नाम हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। प्रेमचंद नाम से हिंदी भाषा में साहित्य की रचना करने लगे। हंस, माधुरी, जागरण पत्रिका के संपादक के समय प्रेमचंद को मुंशी की उपाधि मिली और वह मुंशी प्रेमचंद के नाम से विख्यात हुए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 15 उपन्यासों की रचना किया। इनमें सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, निर्मला, गमन, अछूतोद्धार, गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र उनके छोटे पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियों की रचना किया। इनमें कफन, ईदगाह, पूस की एक रात, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सिर गेहूं, नशा, मंत्र, पूस की एक रात, परीक्षा, इस्तीफा, बड़े घर की बेटी, लॉटरी, आत्माराम आदि सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। यह सभी कहानियां मानसरोवर ग्रंथ में संग्रहित हैं। मुंशी प्रेमचंद ने संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, उत्कृष्ट नाटक की रचना किया एवं डिस्कवरिंग इंडियन क्लासिक का अनुवाद भी किया। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, गमन, सेवा सदन, कहानी शतरंज के खिलाड़ी, कफन जैसे कई रचनाओं पर बेहतरीन फिल्म का निर्माण हुआ एवं इनकी लिखी कथा पर आधारित तहरीर नामक धारावाहिक का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र से हुआ। इन्होंने मजदूर फिल्म की पटकथा लिखी और इस फिल्म में मुंशी प्रेमचंद ने खुद मजदूर नेता का एक छोटा सा भी रोल अदा किया। प्रेमचंद मानवतावादी, मार्क्सवादी, प्रगतिशील विचारधारा के पोषक थे। इन्होंने बाल विधवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार शिवरानी देवी के साथ पुनर्विवाह करके प्रगतिशीलता का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही में प्रेमचंद स्मारक एवं शोध संस्थान की स्थापना किया है। गोरखपुर में मुंशी प्रेमचंद पार्क, प्रेमचंद निकेतन नामक ऐतिहासिक स्मारक एवं देश में अनेकों शिक्षण संस्थान मुंशी प्रेमचंद के नाम से संचालित हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा फेलोशिप पुरस्कार का वितरण किया जाता है। भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 31 जुलाई सन 1980 को इनकी जन्मस्थली पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। आज़ादी के 76 साल बाद भी मुंशी प्रेमचंद के विचार एवं रचनाएं देश, समाज और राजनेताओं को प्रभावित करती हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारियों के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं की शुरुआत किया। आज देश डिजिटल युग में है, मानव जीवन बहुत तेजी और आधुनिक होता जा रहा है। तमाम बदलाव के बावजूद भी भ्रष्टाचार, गरीबी, सामाजिक असमानताएं, बुनियादी समस्याएं, नारी शोषण आदि किसी न किसी रूप में समाज में व्याप्त हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक विचारधारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रभावित हैं। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद के साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल मानते थे, जो समाज को सही दिशा दिखाए, योगी आदित्यनाथ भी अक्सर युवाओं को, विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तक पढ़ने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान समय में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं, नारी का शोषण करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ एक्शन, महिलाओं के सम्मान में महिला हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना संचालित योजनाओं के की प्रेरणा मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवादी साहित्य से उन्हें मिली है। मुंशी प्रेमचंद की विचारधारा और साहित्य आज के युग में भी प्रासंगिक एवं आम जनमानस के लिए कल्याणकारी है। उनकी रचनाएं साहित्यकाश में सूर्य की तरह दीप्तिमान है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों, कहानियों, नाटकों को हीरे की तरह तराश कर सामाजिक कसौटी पर कसकर पाठकों के सामने प्रस्तुत कर चिरस्थायी बना दिया। इस महान कथाकार, उपन्यास सम्राट का देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को लम्हे के में बीमारी के बाद वाराणसी में हो गया। इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद। फ्रिज काट।

0: हाँ भोला भैया,
1: हाँ सुनिए।
0: देखा कितना अच्छा भाई हमारा मुंशी प्रेमचंद का साहित्य संसार। ये विषय पर दीपक कुमार केसरवानी भैया जिनके साहित्यकार रहलन, वो देखा अपने पंच भैया लोगों से कितना अच्छा तरीका से बतौलन मुंशी प्रेमचंद का जौन जौन भी उनका साहित्य संग्रह बा,
1: बिल्कुल
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: के हिसाब से कितना प्रासंगिक बा।
1: प्रासंगिक बाबू भैया, तो इतना बढ़िया जानकारी देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन एक मनमन सहन के साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल हमकर संगतिया भैया एक छपरहिया सुनावत हूँ, तो सुनल जाए फिर
0: तो तनिको न हो देर हो जाएगो
1: मन फेर।
0: ए

0: भोला भैया,
1: हाँ चलो भैया।
0: देखा देवेंद्र कुमार लाल भैया और संघाती लोगों के माध्यम से जनबा एगो छपरैया हमन सुनत है जा, और एके सुन ले के बाद देखा मन एकदम तरोताजा हो जाला।
1: बिल्कुल।
0: ओमें देखा ढोलक के मधुर थाप और हारमोनियम का मीठ लय जनबा, पूरे पंचवती का माहौल एकदम खुशनुमा उसे बन गई बा।
1: बिल्कुल भैया। और ये जुनवा के मधुर माहौल के बीच कुछ किसान भैया बहन लोग भी अपना खेत खलिहान के काम निपटा करके पंचायती में जुट गए हों।
0: बिल्कुल भोला भैया, देखा बरसात के मौसम भी जनबा किसान भाई लोगन खातिर देखो खुशहाली का संदेश लेके आवेला, और हर किसान चाहेला कि भरपूर बरखा होवे
1: बिल्कुल।
0: ताकि खेत में नमी बनल रहे। देखा ऐसे धान हो चाहे मक्का अरहर हो या और भी कौन फसल हो, ओकर बढ़िया से बढ़वार होला,
1: बिल्कुल
0: सिंचाई पर जौन खर्चा होला उहो कम हो जाला।
1: बिल्कुल। और लेकिन भैया इहो एक बात हो ना
0: का भैया?
1: कि बरखा के संगे संगे जनवा की बादल के गरज चमक भी बढ़ जाला। कई
0: हाँ
1: बेर तो तेज बिजली कड़कला जिकरे जो जैसे जो पैदा हो जाला
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: खतरा, और ई एक झटके में जान माल के भी बहुत बड़ा नुकसान होला भैया।
0: बिल्कुल सही कहते
1: ऐसे
0: हैं,
1: बरखा के आनंद के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जब आकाश में तेज गर्जन सुनाई देवे तो खुला खेत में बिल्कुल काम नहीं करे चाहिए भैया।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने बोला भैया। देखा एकल पेड़ हो चाहे बिजली का खंभा हो या ऊंच जगह हो, वहाँ ओकरे नीचे न खड़ा होके चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मोबाइल चलावें या फिर धातु का जो औजार आप पकड़ ले हुई हैं तो वो खुला मैदान में ओके मत करें
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, और तुरंत जनबा पक्का मकान या सुरक्षित जगह पे शरण लेवे के चाहिए। अगर सुरक्षित भवन न मिले तो दोनों गोड़ अपन जोड़ करके यानी ओके का कहल जाला
1: कुकड़ू।
0: उकड़ू उकड़ू बन करके जनबा बैठ जाए के चाहिए। बिजली गिरला के बाद जनबा ओके समय जनबा नदी या तालाब पोखरा ओकरा से दूर रहे के चाहिए।
1: बिल्कुल। अब बिजली चमके के बाद भैया कम से कम 30 मिनट ले सावधानी बरते के
0: सही
1: चाहिए।
0: कहा तुम,
1: थोड़ा सा सतर्कता बड़ा हादसा टार सकला।
0: सही।
1: बिजली गिरला के घटना प्राकृतिक आपदा जरूर है, बाकी जागरूकता से नुकसान घटावल जा सकला भैया।
0: बिल्कुल सही कहा तुम।
1: गांव में एक दूसरा के समय पर चेतावनी देवे के चाहिए। अब बच्चा बुजुर्ग चाहे महिला हो, ये सबके सुरक्षित जगह पर पहुँचा में हम लोग की मदद करे के चाहिए। और मौसम विभाग के सलाह पर भी हम लोग जरूर ध्यान दे के
0: जरूर
1: चाहिए।
0: ध्यान देना चाहिए, और वो समय देखा जो अफवाह फैलेला ऊपर जनबा बिल्कुल भरोसा न करे के चाहिए, सही जानकारी अपन गठियावे के चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और देखा भैया आपदा के समय धैर्य बनवले का जरूरत बा, सुरक्षित रहब तो खेती भी सुरक्षित रही,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सजग किसान ही जन होला वह सफल किसान होला। और देखा आज के समय में मोबाइल तकनीक जनबा वो किसानन खातिर बड़ा सहारा बन गया भैया,
1: बिल्कुल
0: कहे
1: बिल्कुल।
0: से कि देखा दामिनी और मेघदूप ई
1: हाँ।
0: जन दूठे ऐप बा ऊ
1: बिल्कुल
0: जनबा किसानन खातिर एकदम सुरक्षा कवच का काम करत बा।
1: बिल्कुल भैया। ये ऐप मौसम से जुड़ल जरूरी जानकारी समय समय पर उपलब्ध करावला। बिजली गिरला के संभावना के पहले से चेतावनी देला, और इससे किसान समय रहते सुरक्षित जगह पर जनबा की जा सकला। खेती काम मौसम में हिसाब से तय करके एक तकनीकी से जान माल के सुरक्षा भी बढ़ावला।
0: बिल्कुल
1: हर किसान के ये ऐप के उपयोग जरूर करे चाहे भैया।
0: बिल्कुल सही कहत हुआ भोला भैया। देखा दामिनी ऐप जनबा वो आसपास बिजली गिरला के संभावना का एकदम जोन वास्तविक समय होला ओकर सूचना देला,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: देखा मोबाइल पर जोन अलर्ट मिले जोन कहल जाला चेतावनी
1: हाँ
0: वो मिलते ही जनबा किसान उस तुरंते सावधान हो जालन। और देखा मेघदूत ऐप भी जनबा बरखा हो चाहे तापमान हो हवा या फिर मौसम का पूर्वानुमान ओके बतावेला,
1: बिल्कुल
0: और देखा ये जानकारी से बुआई हो चाहे सिंचाई और कटाई एक सही समय चुनल जनबा वो आसान हो जाला, खेती का योजना भी जनबा वैज्ञानिक तरीका से बन सकेला। और देखा सबसे बड़ी चीज ना भैया कि अनावश्यक जोखिम से बचाव भी हो जाला
1: भैया।
0: इससे।
1: ये ऐप के उपयोग दिन पर दिन बढ़त जा रहा बा, और तकनीक खेती के और ही सुरक्षित या ये कहल जा सकला लाभदायक भी बना रहा बा।
0: बिल्कुल
1: भारत सरकार और मौसम विभाग किसान के ये ऐप के

0: इस्तेमाल करे खातिर प्रेरित कर दबा। हर किसान भाई बहन अपना मोबाइल में दामिनी या मेघदूत जरूर डाउनलोड करे के
1: चाहिए उनके। हाँ।
0: सोचें, और खेत जाए से पहले मौसम की जानकारी देखे की खातिर आदत भी डाले के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: सही
1: कहा
0: समय
1: था।
0: पर मिल चेतावनी बड़ा हादसा टार सकला, और सुरक्षित रहब त परिवारन के सुरक्षित भी हम लोग जुन बाकी रख
1: रखब और
0: सकीला।
1: खेत भी सुरक्षित रहे भैया।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सही कहा था। और जागरूकता और तकनीक का मेल जोन बा वो आपदा से बचाव का सबसे मजबूत उपाय बा भूल गया।
0: बिल्कुल
1: यही से देखा हमन सजग बनी, सुरक्षित रही और दूसरन के भी जागरूक करी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: यह बा समझदार किसान और सुरक्षित खेती का पहचान। और देखा भोला भैया हमन का बात बात कही तो होते ही, लेकिन आज के पंचायती के विशेष क्रम में मानसून की अनिश्चितता में जैविक खेती सहायक
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये विषय पर जनबा बाबूलाल मौर भैया जो कि प्रगतिशील किसान हुआ उनसे अपन मुन्ना भैया का बात बत कही हो रहा बा, तो हम तो कहते कि बिना देर के पहले
0: बिल्कुल भैया
1: जानकारी के
0: सुना लीजिए।
1: सुनल जाए।
2: किसान भाई देखें, जब भी खेती के बात आवेला तो शुरुआत होला मानसून के बारिश से। मानसून के बारिश के इंतजार हम सभी लोगों के रहेला कि पानी बरसी तो हम अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ाए, खास करके खरीफ वाली फसल जो भी लेवे के बा। और अगर सही समय पर पानी बरस जाला तो ऐसे अपन जो फसल चक्र बा वो भी बढ़िया ढंग से आगे बढ़ाला, और अगर पानी समय पर नहीं बरसेला तो कई तरह के व्यवधान उत्पन्न हो जाला, जैसे कि इधर भी हम सभी लोग देखत हैं। जा ऐसी स्थिति में अपने माटी पर एकर क्या प्रभाव पड़ेला, अपनी खेती पर एकर क्या प्रभाव पड़ेला, और हम कैसे इस चुनौती से जूझी, कैसे एकर सामना करी, यही विषय पर बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ हुआ बाबूलाल मौर्य। आप मानपुर रावर्ट्सगंज से हम, तो बाबूलाल जी सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। ये जो मानसून के अनिश्चितता दिखाई दे रहा बा इधर बीच, कि समय पर पानी नहीं बरसत बा या फिर विलम्ब से बरसत बा या पहले ही बरस जा रहा बा, तो एक अपने खेती बाड़ी पर असर दिखाई दे रहा बा। तो आप एक खेतिहर होकले के नाते, एक सजग खेतिहर होकले के नाते, आप ई मानसून की अनिश्चितता की कैसे देखत हुआ, एकर का प्रभाव पड़ रहा बा अपनी खेती बाड़ी पर?
3: भैया देखे, मानसून तो ये साल लेट हो ही गल बाए, लेकिन मानसून के लेट होए से प्रकृति के साथ साथ हमहनु के चले के हुई। तो भाई मानसून यदि लेट हो गल बाए तो हिसाब से हमन के काम करे के पड़ी। जैसे भैया हमन का सब्जी वाली खेती तो काफी प्रभावित हो गई बा, जैसे लता वर्गीय सब्जी में नेनुआ, करेला, लौकी, बोरा, भिंडी, हमने भैया जैसे लता वर्गीय सब्जी अपन कैले ही जाए। तो मान लो हमन के पास साधन बा, लेकिन साधन रहते हुए वो प्रकृति का जो रंग होला बरसाती मौसम वाला, वो रंग नहीं भाई, केवल जियत भर भाई। तो आशा लगल बा कि भाई बरसात होई फिर हमने सुधार लेवल जाई। यही तरह से भैया देखा जैसे धान का खेती बाय, अपने जनपद में धान के ज्यादा लंबे पैमाने पर खेती होला। एमिन भैया बावनी मंसूरी का बीज हर साल पलट रहा, लात रहा, रोपात रहा है, लेकिन भैया ये साल अब एक महीना लगभग हमन का लगभग लेट हो जात बा, 20-25 दिन लेट हो गल बाय। तो ऐसे में भैया यदि किसान भैया लोगन के पास बावनी मंसूरिया के बाद यदि कोई धान का वेरायटी डल्ले हुए, वो धान के भैया पूरा पूरा लगाए दें, ओके न नुकसान करे। कहे से कम दिन वाली वेरायटी ही अब लगाई हन तो उनके बढ़िया रही। कहे से भैया अगली फसल जिसे हमन के नवम्बर में बुआई भी करे के बाय, तो ओकरे पहले धान यदि हमन का तैयार हो जात बा तो ठीक बाय। अब बावनी मंसूरिया बदे तब लेट हो ही गल बाय। कुछ भैया जिसे एकर विकल्प ई बा जिसे सीधी बुआई भी धान को होला भैया, और जगह तो बड़ा सक्सेस हो जिसे मरिहान टाइप में, उधर मरिहान क्षेत्र में बढ़िया उकर उत्पादन लेवलन, लोग रोपे के तरह पैदा लेवलन। तो भैया जिसे किसान से यह कहे कि भाई कि कुछ लोग भैया सीधी बुआई भी कह के और अच्छा उत्पादन ले सकलन ये बदलते मौसम के हिसाब से। और भैया जिसे एक हमन के जमीन में मिट्टी में जैविक वाला खाद जोन बा भैया, हमने बहुत कम कह दिले ही जा, और जैविक खाद यदि हमने अपने मिट्टी में देत रहल जाई और ओके भरपूर मात्रा में दियात रही तो जल धारण क्षमता जौन हो हमने के मिट्टी के अधिक हो जाला। तो इसने जिसे प्रकृति के साथ साथ ओके लड़े के कुछ हमन का क्षमता अधिक हो जाई।
2: जी, यानी कहे के मतलब कि अपने माटी में पानी सोखे की क्षमता अगर बढ़ावे के बा तो जैविक खेती से हम लोग उनके जुड़े के हुई। और बाबूलाल जी पिछले समय से ही हम लोग जैविक खेती के तरफ कदम बढ़ावे शुरू कर देले हैं, जा बहुत से अपने किसान भाई कुछ अपन हिस्सा जैविक खेती के तरफ ले जात हुआ। हालांकि देखे उनके ये कहानगी बा कि अपन माटी अब ई अवस्था में पहुंच गई बा कि अचानक से उनमें परिवर्तन नहीं कैल जा सकला, लेकिन मौसम के मार के देखते हुए अब हम लोगन के थोड़ा सा कदम बढ़ावे के पड़ी। तो जैसे मान लें कि जहां तक आप जैविक खेती की चर्चा कर लें, तो जैविक खेती में जैसे मान लें कि जो खाद वाली व्यवस्था बा, तो कौन कौन खाद के हम लोगन के प्रयोग करेंगे
3: भैया? जैसा जैविक

0: खाद के जब बात आवेले तो हमन के मिट्टी वाली जोन जांच होला तो भैया मिट्टी में वैज्ञानिक लोग बतावलन कि 0.8% कार्बनिक पदार्थ होवे के चाहिए, इतना होवे के चाहिए। और हमहने के जमीन में सोनभद्र के जो हमन के जमीन बा भैया 0.4 से 0.5% ही रह गल बाय, होवे के चाहिए 0.8%, तो लगभग आधा हो गल बाय। तो मतलब कहे के कि हमने के जमीन जोन बाय एकदम बॉर्डर लाइन पर मतलब ऊसर की तरफ अग्रसित होत हो, तो एके भैया बचाओ बदे के गोबर वाली खाद, घूर वाली खाद जोन पहले गांव में हमन के चलत रहल, गड्ढा वाला खाद और नाडेप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ये भैया तमाम तरह के जोन खाद बा हमन के जमीन में जरूर देवे कोई भैया, जिसे हमन के भोजन में सब्जी और सलाद का जोन महत्व बाय, केवल चावल दाल से काम नहीं चलत, सब्जी और सलाद चाहला, वैसे भैया जमीन में देखा कार्बनिक पदार्थ होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक बाय। और ओके बढ़ावे बदे के भैया पशु का गोबर और हरी खाद, ई कुल भैया जैसे पराली वगैरह, ई कुल जब से हमने सड़ावल न जाई, जब से जमीन में देवल न जाई, तब से हमने के जमीन का संरचना न बदली, मिट्टी का रूप न बदली, मिट्टी का उपजाऊ क्षमता न बढ़ी, और भैया रासायनिक खाद से अधिक उत्पादन हमने लंबे समय तक नहीं लेवल जा सकल जात, ई हमने का अनुभव बाय। खाद केवल डाई यूरिया दे जमीन भी खराब हो जाला, जल धारण क्षमता तो एकदम में से होकर खत्म हो जात हो, ऐसे भैया लौटे के पड़ी, पशु रखे के पड़ी, और अपन सड़ल गलल पराली वगैरह ये हमेशा खेत में सड़ा के और एक डाले के पड़ी।
1: बिल्कुल सही कहले कि जो भी पशु पालन हम लोग कैले हैं जा, तो उनसे निकले वाला जो अवशेष बा एक ही अपने खेती में हम लोगन के शामिल करे के हुई, और एक लंबा समय इधर बीच गुजरल जेमे की हम रासायनिक पर निर्भर हो गयी, और ओकर नतीजा ये भइल कि अपन खेत के माटी उपज जो भी बा प्रभावित भइल। बात तो बिल्कुल सही बा, और अब ओके प्रभाव भी अब दिखे लगल बा कि मानसून के बारिश भी सही समय पर नहीं हो रहल बा, तो ऐसे में हम लोग अपन खेती बाड़ी के कैसे आगे बढ़ावल जाए एक चुनौती हो गई है। तो का बाबूलाल जी ई मौसम के अनिश्चितता के देखते हुए, मानसून के सही समय पर न आवे के देखते हुए हम लोगन के अपने खेती बाड़ी के जो तौर तरीका बा, जो फसल चक्र बा, जो योजना बा, का उमे भी परिवर्तन करे के पड़ी?
0: जी परिवर्तन करे के पड़ी, काहे से भैया जैसे हम लोग पहले अपन एक योजना बना लेवल जला कि भैया हमन के ए साल में ऐसे ऐसे करे के बा, ये खेते में ही लगावे के बा, ई लगावे के बा, जैसे पहले तो हम भैया अपने एक चार्ट बना के काम करी, कैलेंडर बना करके, लेकिन अब वो कैलेंडर में थोड़ा परिवर्तन करे के पड़ी, काहे से कि जौन लंबे समय वाली वेरायटी डलिन है अब वो न लगा के कम समय वाली वेरायटी अब लगावल जाये अपने खेतन में, तो भैया हमन का जौन उत्पादन बा जौन आमदनी बाय वो ज्यादा प्रभावित न हुई। और एकरे बदे भैया अलग अलग किस्म का बीज आवेले मार्केट में, और यही सब अपना करके अपने खेती में लगावल जाये, और कुछ फसल ही चेंज कर जाये, जैसे भैया ये समय मिर्च जिसे किसान लगा दिलन है तो उनकर मिर्च उखड़ गल खेते में सूख गल, तो अब चूंकि बीज डलिहन नर्सरी डलिहन तो 1 से 1.25 महीना उनकर नर्सरी तैयार होने में लग जाला, कम से कम 1 महीना लगी जाला, 25-26 दिन लग जाला बढ़िया अगर तुरंत डाल दीहन तब, तो ऐसे भैया उनकर मिर्च 1 महीना लेट हो जाये, और बाजार भाव उनके जौन बाय अब 1 महीना लेट मिली तो उतना पैसा न मिल पाई। तो ऐसे टमाटर यदि वो जगह पर अगर कर देते हुए, टमाटर इसमें भैया अगस्ती में हो,
1: अच्छा,
0: क्योंकि जुलाई में ही उनका नर्सरी पड़ेला, इसमें जुलाई चलते हो, तो अगर टमाटर डाल देते हुए तो उनकर जौन मिर्च का क्षतिपूर्ति बाय वो टमाटर से उनके मिल जाये। यही तरह भैया जैसे कुछ लोग यदि गोभी भी लगा सकलन जा, गोभी का भी बढ़िया समय अगस्ती चलत हो, गोभी लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकलन, ओकरे बाद भैया धनिया पालक मूली ई बाय ई नहीं किसानन के हताशी नहीं हो भैया हम मिर्च डले डली है और मिर्च हमारा नुकसान हो गल तो हम पूरी तरह से बैठ जाये, ऐसा मत सोचे लोगन, प्रकृति हो भाई, प्रकृति के साथ किसानन के हमेशा लड़ाई के होला और समय के साथ चले के हुई, तो अपन थोड़ा सा योजना बदल के अपन खेती के तौल तरीका थोड़ा सा बदल करके और ओके आगे बढ़ावे तो उनके अच्छा मुनाफा हुई।
1: मिर्च जहाँ पर लगल है अगर सही समय पर बारिश नहीं मिल पा रहा बा तो टमाटर लगा दें, गोभी लगा दें, जैसे कि आप लोग
0: जी जी बहुत बढ़िया उनका उत्पादन हुई और अच्छा मुनाफा भी उनके मिली।
1: जी तो किसान भाई देखें आज अपने साथ मानपुर से बाबूलाल मौर्य जी हूँ, और आपके पास अच्छा अनुभव है अपने खेती बाड़ी के, और हम लोग बातचीत कर रहे थे जा कि ये विपरीत परिस्थिति में अपनी खेती बाड़ी के हम लोग कैसे आगे बढ़ावल जाए, जैसे कि हम लोगन के आय भी प्रभावित न हो, खेती प्रभावित न हो, कहें कि खेती पर तो सारा कुछ निर्भर बा। तो बाबूलाल जी जैसे मान लें कि अभी आप धान के बारे में भी चर्चा कर लें कि जैसे ही मानसून के बारिश अगर सक्रिय हो जा रहा बा तो हम लोग सीधी बुआई से अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावा
0: जी जी धान का भैया बड़ी अच्छी वेरायटी मतलब आ गई है जो उनकी सीधी बुआई कर दिले से किसानन का काफी खर्च भी बच जाला, जैसे कई बार

0: वाला पानी वाला उनकर बच जाला, तो सीधी बुआई करके अच्छा उत्पादन उम्मीद मिलला और ये सफल विधि भी हो। और जैसे रोपाइये का तरीका उनकर अपनावे के हो भैया, तो जैसे किसान लोग का करेलन कि कई वैरायटी के बीज डालेलन, तो कई वैरायटी के डालेलन तो भैया उनके पास बीज कुछ बचल भी रहला, तो अब जो बीज उनकर बचे वाला हो कम दिन वाली भैया ओके पूरा पूरा रोप दें, ज्यादा जो लंबे समय वाली वैरायटी हो ओके कम से कम रोपें और कम दिन वाली वैरायटी ओके अधिक से अधिक अपने खेत में रोपें, इससे कि आगे जो हमारे आलू वाली फसल बा रबी वाली ओके जो सही समय से बुआई हो जाए।
1: तो कम अवधि वाला अगर लगाई है तो समय से नवंबर तक तैयार हो जाए और उसके बाद वो गेहूं की फसल ले सकेलन। बात बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो भी तरकारी इस समय अपने खेती में लगल है तो ओके खातिर का कहे चाहिए, का ओके देखभाल में इसमें
0: भैया इसमें जैसे जो साग सब्जी लगल बाय पानी से तो सूखते बाय, जेकरे पास भैया साधन बा ओके नाली के सहायता से ओके पानी के अपन ओके दे दें, मेल हमेशा तर रखे भाई भगवान है, अब दो चार दस दिन में बरसात हो ही वाली बात, तब तक अपन जीवले रहे ओके, और ओके साथ साथ भैया जल निकास का भी अपने खेती में व्यवस्था कैले रहे, ये मत सोचे कि बारिश नहीं होत बा तो फिर अगली बारिश न हुई, ऐसा मत सोच के करें, जौन भी काम करें जल निकास का भी व्यवस्था हो और सिंचाई का भी व्यवस्था होने की चाहिए, कि बीच में कभी कभी जैसे बारिश नहीं होत बा तो ओके बदले सिंचाई का भी व्यवस्था, तो नाली और बेड से सहायता से जब काम करी है तो भैया बेड पर अपन सामान बो दें और नाली में सिंचाई का भी काम करिए और जल निकास का भी व्यवस्था हो जाए, तो इस तरह से भैया अपन साग सब्जी में ओके अच्छा आगे बढ़ावे और उनके अच्छा मुनाफा मिले।
1: जी, तो किसान भाई देखें, बाबूलाल मौर्य जी आज मानपुर से अपने साथ रह रहे हैं और आपके ये कहानी रहल की जो चुनौती बा मानसून की अनिश्चितता के इके खातिर ऐसे जूझे के खातिर ऐसे लड़े के खातिर हम लोगन के कुछ बात पर ध्यान रखे के हुई। एक तो देखें जैविक खेती के तरफ कदम बढ़ावे के हुई, अपने खेती में जैविक खाद बा ओके इस्तेमाल करे के हुई। दूसर अगर जहाँ पे मिर्च की खेती आप कैले हुआ तो आप ओके जगह पर आप टमाटर लगा सकेलन और गोभी भी लगा सकेलन, और इकरे अलावा जो कम अवधि वाला धान के फसल बा इके आप सीधी बुवाई करके अपने खेती बाड़ी में शामिल करके जो भी कमी बा जो भी परेशानी बा इसे आप निपट सकेलन ऐसे लड़ सकेलन। तो बाबूलाल जी आज आप किसान भाई लोगन की इतना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया देखा इतना अच्छा बात बत के सुनल गेल कि मानसून की अनिश्चितता में जैविक खेती सहायक, ए विषय पर देखा बाबूलाल मौर्य भैया से अपन मुन्ना भैया के बात बत के रहल और बड़ा अच्छा फरिया के भी पूछलन, और देखा कुल बात का निचोड़ एक रहला भोला भैया कि कैसे अपने खेते में लागत कम लगे उत्पादन ज्यादा बढ़े और उत्पादन गुणवत्ता युक्त रहे, इतना गुणवत्ता युक्त रहे कि बाजार में जाए तो भाव अच्छा मिले।
3: क्या बात भैया, बाजार के भाव याद दिला दलन आप, तो आज रावसगंज मंडी के बाजार भाव भी आ गेल।
2: अरे वाह,
3: बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हन भैया
2: तो बिना देर के लिए बाज दे।
3: तो लाल वाला आलू आज जोन बाकी रावसगंज मंडी में 1100 से 1200 रुपए कुंतल रहा, और सबकी आलू 900 से 1000 रुपए कुंतल, प्याज 2200 से 2500 रुपए कुंतल, वही टमाटर रहा आज 2000 से 2200 रुपए कुंतल, बोरा 2800 से 3000 रुपए कुंतल, और कोहड़ा रहा 1500 से 1800 रुपए कुंतल, लंबा वाला बैगन रहा 1200 से 1500, गोल बैगन 2200 से 2500 रुपए कुंतल, वही परवल रहा आज 3500 से 3800 रुपए कुंतल, लौकी 1800 से 2000, करेला 3500 से 4000, भिंडी रहा 1200 से 1500 रुपए कुंतल, नेनुआ 2000 से 2200, कुंडू रहा 1800 से 2000, और मूली रहा भैया 2200 से 2500 रुपए कुंतल, हरी मिर्च 6000 से 6500 रुपए कुंतल,
2: बड़ा अच्छा भाव मिलल,
3: और लहसुन रहा भैया 14000 से 15000 रुपए कुंतल, और धनिया 10000 से 12000 रुपए कुंतल, पालक रहा 2000 से 2200 रुपए कुंतल, और अदरक रहा 14000 से 15000 रुपए कुंतल, सूरन रहा 4000 से 5000 रुपए कुंतल, और चौराई 1000 से 1200, खीरा रहा भैया 1800 से 2000 रुपए कुंतल, और मकई रहा 1000 से 1200, और फूल गोभी रहल 2500 से 3000 रुपए सैकड़ा, पत्ता गोभी रहल 2200 से 2500 रुपए सैकड़ा, और नींबू 200 से 250 रुपए सैकड़ा
2: प्रति सैकड़ा रहल। तो इस तरह रावलगंज मंडी के बाजार भाव, तो उनके भी धन्यवाद दिहल जाए। तो हम तो कहते कि एगो मनफेर भा डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल और संघाती लोन के माध्यम से कहरवा के माध्यम से मनफेर करवाते, तो हम लोग सुनल जाए।

0: भोला भैया
1: असलू भैया,
0: देखा कितना अच्छा कहरवा के माध्यम से डॉक्टर देवेंद्र कुमार और संगाती लोगन जनबा एगो मनफेर करावत हुआ, लेकिन अपने पंचायती कभी देखा था कि समय लगभग लगभग हो ही चुकल बा, लेकिन चलत के बेरी जनबा काल ही कौन हो का हुई तो कर बारे में तनी बतावे।
1: भैया गांधी जी के विचार और उनका वहाँ पर का कुछ प्रभाव है ये विषय पर अरुण तिवारी जो अध्यापक हम पेशे से उनसे मुनय भैया की बात बत कही
0: होगी तो हम बिल्कुल आकर के सुनल जाए। और गांधी जी के विचार के बात कहल जाए तो गांधी का मेन जो मुख्य विचार रहा स्वच्छता के बढ़ावा, तो स्वच्छता के बढ़ावा जन भाव कैसे दिहल जा सकेला वो सबकर प्रयास अगर सम्मिलित रहेला तब हो सकेला।
1: इस समय भैया देखा जो संक्रामक रोग के बात है जोरों पर है, ऐसे बचे खातिर यही जौन एक से उपाय हो कि जौन बाकी साफ सफाई से लोग रहे और जहाँ मच्छर भी पनपे की जौन इसमें बात हो तो जहाँ टायर वगैरह हो ना उनमें चाहे जो भी गड्ढा गड्ढी हो उनमें
0: मतलब ठहरा हुआ पानी
1: वो अगर 7 दिन तक एक जगह स्थिर है तो निश्चित रूप से में मच्छर के लार्वा
0: तो हाँ, बिल्कुल
1: पनपी भैया
0: पनप जाए और वह जनबा बीमारी का जड़ हो जाए।
1: तो ध्यान रहे कि 7 दिन के अंदर ढरका दे
0: हटा दे चाहे, बिल्कुल सही कहते हूँ। और देखा बरखा बुनी में आजकल लोग भीग भी जाते हैं, लेकिन भीगला के बाद फिर जाके वह खाली घरे में जाकर के तौलिया से पोछ करके रह जाते हैं। लेकिन एक विचार ये बा कि घरे का बाहरे का जो पानी बा यानी बरसात का पानी बा उसे अगर भीग गए हुए तो घरे में भी जा करके अगर दो चार लोटा धो करके साबुन से नहा करके तब फिर जौन बा अपन दिनचर्या वाला काम करें तो स्वस्थ बने स्वस्थ सही रही
1: अपन। कोशिश रहे कि हल्का गुनगुना पानी भी ले व्यक्ति तो निश्चित रूप से कुछ कुछ उसमें बचत कर जा
0: बचत हो सकेला।
1: भैया बात बात कहे तो हम लोग बा फिर अगले दिन और बतिया जाए
0: बिल्कुल तो चल जाए
1: सुई सारा करत हो कि यही पंचायती समेटे
0: समेटे के तो चल जाए तो सब पंचन के राम राम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। इसमें आज हमारे कलाकार हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाल और साथी। अब आइए सुनते हैं इनके स्वरों में सोरठी।

सुरठी के बाद लोकगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खेमटा। कलाकार हैं देवेंद्र कुमार लाल और इनके साथी।

इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए देते हैं आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपकी जानकारी के लिए। रात 9:30 पर सुनेगा करेंट अफेयर्स हमारे दिल्ली केंद्र से और रात 8 बजे संसद समीक्षा, ये भी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है। प्रस्तुति होगी लक्ष्मी सिंह की और प्रस्तुतकर्ता होंगे सचिन कुमार वर्मा। रात 9:15 पर हम लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। रात 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात में 8:30 पर पेश किया जाएगा सुगम संगीत कार्यक्रम।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, रात 8 बजे सुनिएगा संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर करेंट अफेयर्स हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे हमारे केंद्र से सुनिएगा म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों पर होगा। प्रस्तुति होगी लक्ष्मी सिंह की और प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर बाद हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश।

0: उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके

0: साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
1: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उस पे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हुए हैं और हम लेकर हाजिर हैं मिले जुले फिल्मी गीतों का संगम सबरस कार्यक्रम। श्रोतों, सबरस कार्यक्रम में आज स्पेशल है और आज है हमारे बहुत ही जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी जी का पुण्यतिथि है। तो आप आकाशवाणी परिवार की तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब को शत शत नमन है, प्रणाम है। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम और आज मोहम्मद रफी के गायन पर विशेष कार्यक्रम है, यानी कि उनका आज पुण्यतिथि है 31 जुलाई को। सुरों का जो था बादशाह वह नाम था रफी, सुरों का जो बादशाह था वह नाम था रफ़ी, हर दिल की धड़कन हर महफिल की जान थे मोहम्मद रफ़ी।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, रफ़ी साहब कभी भजन में भक्ति, कभी गज़ल में नज़ाकत, हर गीत में छलकती थी उनकी सच्ची इबादत। दर्द को भी मुस्कुराकर सुरों में ढाल देते थे रफ़ी साहब। खुशी के हर रंग को भी अमर बना देते थे रफ़ी साहब।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोतों, मोहम्मद रफ़ी साहब की बड़ी विशेषता थी कि वो हर अभिनेता और हर परिस्थिति के अनुरूप अपनी गायकी को ढाल लेते थे। यही कारण है कि उनके गीत हर पीढ़ी के श्रोताओं के मन को स्पर्श करते हैं। उन्होंने अनेक महान संगीतकारों और गीतकारों के साथ मिलकर हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी।

श्रोतों, आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से और समय हो चला है 7:53। तो जैसा कि हम बातें कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब पर, देशभक्ति हो, प्रेम हो या विरह की पुकार हो, हर एहसास को दे जाते थे मधुर सा आकार, स्वर ऐसा कि आज भी गीत सुनते सुनते समय ठहर सा जाता है। मोहम्मद रफ़ी का हर नगमा दिल को छू जाता है।

श्रोताओं, चलते चलते हम यही कहेंगे कि संगीत जगत के उस अमर सितारे को शत शत नमन, जिनकी आवाज रहेगी सदा हर युग में अमिट और अमर।

तो श्रोताओं, ये था आज का सबरस कार्यक्रम और केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा अनुप्रसारित की जाएगी।

ये कार्यवाही की समीक्षा सुनिए पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी रंजन लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक

मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों

और छह बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं।

0: सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के सीआईपी मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत चार निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। आगाज करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिर वही दिल लाया हूँ का गीत। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

अभी आप सुन रहे थे गोरा और काला फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इंतकाम फिल्म का गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तीन देवियां फिल्म का गीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी ओबरा से आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं अगर फिल्में गीत, तो आइए सुनते हैं मनहर उदास की आवाज़ में ये गज़ल।

0: बज न सका एक दफ़ा भी, साथ हमारा छूट गया। अभी आप सुन रहे थे राजेश जौहरी की लिखी हुई गज़ल को भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। और
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। के समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों।

0: पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Panghal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today,

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे काजल फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दुनिया फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, उम्मीद है कि आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा। और जो हमारे श्रोता ईमेल कर गाने की फरमाइश करना चाहते हैं तो ईमेल आप करें इस पते पर akashvaniobra@gmail.com। कार्यक्रम का नाम है म्यूजिक गैलरी। एक बार आपको पुनः इंग्लिश बता दे रहे, akashvaniobra@gmail.com, MUSICGALLERY। इस पते पर आप ईमेल कीजिए और अपनी फरमाइश, अपने विचार हम तक भेजिए। आपका स्वागत है। तो अगला ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। आप हैं उत्तम सिंह।

सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, साथ में नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शंकुल जंघेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। आप सभी सुनना चाहते हैं जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का गीत अखियों का नूर है अखियों से दूर है। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

रात्रि के 10:12 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उभर केंद्र से ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत। ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत सिरसला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से। आप हैं संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान, राम सरावाले और समस्त सोनगरा परिवार। आपने ईमेल किया है राम लखन फिल्म के गाने को सुनने के लिए, बोल हैं ओ राम जी। तो आइए लता मंगेशकर की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं राम लखन फिल्म का ये गीत।

श्रोतो, अगर आप भी ईमेल कर हमें गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो हमें akashvaniobra@gmail.com, कार्यक्रम का नाम है म्यूजिक गैलरी। एक बार आपको पुनः इंग्लिश में बता देते हैं, akashvaniobra@gmail.com, MUSICGALLERY। इस पर आप अगर हमें ईमेल करते हैं तो आप अपने गाने की फरमाइश और अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव फ्रानासी, हरियाणा, जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, आपने धन्यवाद लिखा है। धन्यवाद जी आप सभी का। आप सभी के ईमेल मिले हैं, कोई भी गाने सुनवा दीजिए। तो आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोतो, अब ये ईमेल आया है संबलपुर कांकेर से। आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। आपने ईमेल भेजा है यलगार फिल्म के गाने की, आखिर तुम्हें आना होगा। तो आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं यलगार फिल्म का ये गीत।

ये ईमेल आया है हमें गांव तुरुवाल, ज़िला नवाशहर, पंजाब से। आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी। आपने ईमेल भेजा है प्रोफेसर फिल्म के गाने के लिए। आवाज़ देके हमें बुलाइए। और आपने ये भी लिखा है कि आदरणीय प्रोग्राम प्रसारक जी नमस्कार, नमस्कार जी आप सभी को। और आपने लिखा है कि हमें रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, हम सभी हमेशा से रेडियो सुनते आए हैं जब भी खाली होते हैं।

और आप सबका प्रसारण करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आप जब ईमेल भेजते हैं तो आप सभी इसी तरह सुनते रहिए और ईमेल कर हमें अपने विचार और अपने फरमाइश बताइए। तो आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से आप सुन रहे हैं म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं akashwaniobra@gmail.com पर। तो आप सभी की पसंद को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। ये पत्र ईमेल आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी को म्यूजिक गैलरी में ईमेल पर आधारित कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार जी। नमस्कार जी आप सभी को। आप कहते हैं कि आप कैसे हैं, हम तो ठीक हैं भाई। आपने फरमाइश की है तो हम आपकी फरमाइश को पूरी करते हैं। आप फरमाइश करते हैं पराया धन फिल्म के गाने की, बोल हैं आज उनसे मुलाकात होगी किशोर कुमार की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सबकी पसंद।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश आई है फिजा फिल्म के गाने के लिए। हमें ईमेल भेजा है हितेंद्र दास जी ने आसाम से। आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ आसाम लिखा है, तो आप अपने विचार भी हमें व्यक्त कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, अपने विचार को कि आपको गीत सुनना या रेडियो सुनना क्यों अच्छा लगता है और क्या सुनना चाहते हैं। तो आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं फिजा फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में ये ईमेल आया है दांत रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। आप सब लिखते हैं कि सब प्रेम नमस्कार, नमस्कार जी आप सभी को। और आपने लिखा है कि आप हमारी फरमाइश को पूरी कर दीजिए, तो क्यों नहीं, हम आपकी फरमाइश को पूरी करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। तो आपकी फरमाइश है राज फिल्म के गाने की, तो आइए आप सबकी पसंद पर राज फिल्म के इस गाने को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अगला ईमेल हमने शामिल किया है डेयर पाटन गुजरात से। आप हैं धीरज रावरी। आपने लिखा है ईमेल के माध्यम से, आदरणीय लक्ष्मी जी सिंह आपको नमस्कार। आप हमें आप तो ऐसे नाथे फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, जी ज़रूर सुनवाएंगे आपको। और एक कोई भी गीत की फरमाइश आई है ईमेल के माध्यम से, ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लपुर उत्तर प्रदेश से। आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। आपने थैंक्स कहा है तो आप सभी का थैंक्स जी ईमेल करने के लिए। तो आप सभी ईमेल कीजिए और सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, आप भी ईमेल करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर ईमेल करें, akashvaniobra@gmail.com। कार्यक्रम का नाम है म्यूजिक गैलरी। तो अब कार्यक्रम से दीजिए लक्ष्मी सिंह को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे म्यूज़िक गैलरी कार्यक्रम। ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत का ये कार्यक्रम था। प्रस्तुति थी लक्ष्मी सिंह की और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद

0: होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने प्रसारण के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।